0: ছিল ছায়া
1: আতি তাতি
0: তুমি হাসকে এসে দেখা

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9। टेलीफोन 01274488935।

वेलकम बैक आफ्टर दिस अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग विल ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि सनराइज रेडियो आप सुन सकते हैं मैनचेस्टर में भी डैब के द्वारा। सो अगर आप मैनचेस्टर में हैं तो आप डैब रेडियो ऑन कर सकते हैं और सुन सकते हैं। और हमारे ऐप के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि ऐप स्टोर नहीं तो गूगल प्ले पे जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप एंड देन दुनिया के किसी भी कोने में आप हमें सुन सकते हैं। सो गो अहेड डाउनलोड द ऐप एंड ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Once again, welcome back in the second hour of this show and welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM आप सुन रहे हैं right now. This is Abby this side. और I hope कि आप enjoy कर रहे हैं इन गानों को. जी हाँ, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँगा और कुछ मीठी मीठी बातें भी हम करेंगे. The next song is right now, specially dedicated to you.

What a lovely song. Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है एबी एंड गेस व्हाट, 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा आज इस संडे की सुबह. मतलब वीकेंड का दिन ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ नहीं रहते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं. सो इफ़ यू हैवन्ट डन दैट ऑलरेडी प्लीज डू, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. वेल ऑन दैट नोट द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Welcome back after the classic flashback. Williams and Rice Radio 103.2 FM. What a beautiful classic song yet. Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तब भी beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. Stay tuned till 11 o'clock.

उन दिनों जबकि तुम थे यहाँ, जिंदगी जागी जागी सी थी, सारे मौसम बड़े मेहरबान दोस्त थे, रास्ते दावत नामे थे जो मंजिलों ने लिखे थे जमी पर हमारे लिए, पेड़ बाहें पसारे खड़े थे हमें छांव की शॉल पहनाने के वास्ते, शाम को सब सितारे बहुत मुस्कुराते थे जब देखते थे हमें, आती जाती हवाएं कोई गीत खुशबू का गाती हुई छेड़ती थीं, गुजर जाती थीं।

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल हिट ऑफ द आवर। सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। दिस इज एवी दिस साइड। 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा और वंस अगेन अ बिग बिग बिग गुड मॉर्निंग टू यू। और आशा करता हूँ कि इस दिन की आपकी शुरुआत काफ़ी अच्छी तरह से, प्यारी तरह से जा रही है। इस आवर में भी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मैं आपके लिए प्ले करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड आई बी राइट बैक। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पी आए आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday, the 23rd of October, at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014. सोफी ज्वेलर्स।
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक आफ्टर येट अनदर ब्यूटीफुल क्लासिक फ्लैशबैक ऑन योर सनराइज रेडियो 103.2 एफएम. राइट नाउ मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, व्हिच इज आफ्टर द न्यूज, और तभी इन ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा. सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड.

once again, welcome back after the hit of the hour, only on Sunrise Radio 103.2 FM. And once again, a big good morning to you. मैं आशा करता हूँ कि इस दिन की शुरुआत आपकी काफी अच्छी तरह से जा रही है. इस शो के मेरे आखिरी आवर में आपका स्वागत है. जैसे मैंने कहा कि 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM. काफी ब्यूटीफुल गाने आपके लिए हाजिर हैं इस आवर में भी. सो स्टे ट्यून्ड.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

व्हाट अ लवली सॉन्ग, क्या गाना था यार। इस गाने के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर सनराइज रेडियो 103.2 FM एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो डेडिकेटेड स्पेशली टू यू।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स टाइम टू गो। मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, लव्ड वंस, बी प्रोडक्टिव, बी क्रिएटिव एंड टेक केयर।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: तेरी गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9। टेलीफोन 01274488935।

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Yo, yo, check it out, remix. Yeah, Hunter. Yeah.

0: Music.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: गलियां गलियां कुमी ते पैरां नी जुतियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नी मिलिया।
4: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: जूलर्स ओकलैंड ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

जी जनाब, घर में है, मकान में, सड़क पे, खुले मैदान में, हमारी तरह कलम कल्ले बैठे

नमस्ते सत श्री अकाल जी एनु वेलकम खुशामदीद कबूल कीजिए काशिफ की तरफ से। जी जनाब, मैं हूं आपका अपना काशिफ, हाजिर खिदमत आपके लिए हमेशा की तरह जनाब। आपका दिल बहलाने के लिए, आपका साथ सिर्फ बातें नहीं जनाब, आपका साथ निभाने के लिए। और हवा पे अपनी आवाज बखेरते बखेरते आपके दिल को, जी हाँ, अपनी बातों से आपके दिल के दरवाजे को खटखटाने के लिए। आप समझे हमें बेशक गैर, मगर आप हैं हमारे अपने, ये एहसास आपको दिलाने के लिए।

0: और जनाब आपको शायद किसी ने ना बताया हो, आप हैं हमारे लिए बड़े खास, यही बात आपको समझाने के लिए। 3 घंटे जनाब हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, जितना जोर है हमारे पास वो सारा जोर लगा देंगे, दिलो जान से आपको अपना बनाने के लिए। जनाब सनराइज रेडियो पे आप सुन रहे हैं ये इस वक्त दीवानावार बेपर की, जिसका कोई सर पैर नहीं, नहीं मेरा सर पैर है, मेरी बातों का सर पैर नहीं होता। ये दीवानों जैसी पागलों जैसी बातें करने के लिए आपके लिए यहां पे कोई होता है हफ्ते में एक आध बार मौजूद, जनाब वो आपका अपना काशिफ ही हो सकता है। ऐसे पागल तो आप ढूंढेंगे, जमाने में हर कोई सियाना है, दीवाना कोई कोई है, अब कोई दीवाना बचा ही नहीं। लेकिन जनाब दीवाना वही होता है जिसको प्यार होता है, और प्यार दिल से हो तो दिल ये कहता है जो मेरा दिल आपके लिए कहता है।
1: हम

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, बड़ी बरसात में और तपती दोपहर में और जनाब बादलों में, बादलों की घटाओं में, हर तरह से जनाब हर हाल में हमें आपसे प्यार हुआ, जिसकी वजह से हमारी दौड़ें लग जाती हैं जनाब संडे वाले दिन आपसे मुलाकात के चक्कर में। और आज चक्कर चलाया है, आज पहली कॉलर रही हमारे साथ आमिना, पहली बार आपने कॉल की और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जनाब आपने कहा कि आपको सुनते हैं तो मज़ा आ जाता है, जनाब आज आपने बताया इतने अरसे के बाद, और ये तो लड़ाई वाली बात थी, लेकिन आप कहती हैं आप थोड़ी सी बिजी हैं, आप दोबारा कॉल करेंगे, सिर्फ बताने के लिए कॉल किया कि जब हम आते हैं तो उनको मज़ा आता है, बाकी किसी को आए ना आए। एनीवेज जब्बार भाईजान आपका शुक्रिया, आपने जो बातें की हैं जनाब वो होंगी आपके साथ, मज़ीद डिटेल की बातें तो फिर पता लगेगा। और कुछ और कॉलर भी हैं 019, आपके लिए भी गीत होगा, आपसे भी बात होगी, जब्बार भाई की गपशप भी होगी जनाब। लेकिन पहले आपको हम एक ब्रेक की तरफ लेके जाएंगे और फिर बाकी दोस्तों से और फिर गपशप होती है जिनका मैंने जिक्र किया है, और उनकी बातें जो होंगी वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि अपनी घड़ियाँ जनाब मिला लें हमारे सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियों के साथ। टाइम हो चुका है 2:20 हो गए हैं और जनाब हम आपसे मिलेंगे एक खूबसूरत से गीत के साथ।
2: थैंक यू फॉर मेकिंग सनराइज रेडियो योर फेवरेट एशियन रेडियो स्टेशन।
3: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: जनाब, बाकी दोस्तों से गपशप तो होगी और बिल्कुल गपशप होगी उनके साथ, और आपको बताएं कि हमारे साथ जो कॉलर्स आए हैं जनाब उनको बिल्कुल हम शामिल करते जाएंगे साथ साथ। लेकिन अभी जी जनाब, अभी हमारे साथ जब्बार भाई रहे, और जब्बार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंदाज, आपका प्यार, पंजाबी तुसी गल करदे हो तो मज़ा आ जाता जनाब, अपना फन लगता है। तो तुसी जनाब आंदे हो साथ, सानू चाबी भरी है। आमना जी की कॉल आई सी पहली जनाब, पहले कॉलर हमेशा बाजी लेके जो जाते हैं फिर उनका नाम बार बार लेना पड़ता है, थोड़ी सी मसरूफ थी लेकिन फिर भी उन्होंने बताया, जो बताया वो मज़े का बताया कि जब हम आते हैं उनको मज़ा आता है। आपको भी अगर अच्छा लगता है, मज़ा आता है तो ज़रूर बताइएगा। हाँ, जब्बार भाई को मज़ा आता है, वो काम पे थे और उन्होंने हमसे बात की, कहते हैं जनाब मैंने पूछ लिया गलती मेरी, मैंने कहा जनाब कहाँ हैं, काम पे हैं, घर पे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल पहले ही छिड़े हुए तुसी बैठे सो कि मैंने कुछ छेड़े सही तो मैं छिड़ जावा। तो आप कहते हैं जनाब कोई दरबार नहीं छड़िया जिथे चादर नहीं चढ़ाइया इंग्लैंड आने वास्ते, तो कोई भी केटरिंग वाला नहीं छड़िया जिदे कोलो जाके असा देगा नहीं पकवाइया, तो देगा वंड वंड के, चादर चाड़ चाड़ के, मंता सुख सुख के, तो असी जनाब इंग्लैंड पहुंचे हाँ, तो हूँ कम ना करिए तो की करिए। पिछले कहें जनाब तो एडिया मनता मुरादा ਐਡੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਐਡੇ ਨਫਲ ਸੁੱਖ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਝੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰ ਭਾਈ ਬੜੇ ਅੱਕੇ ਬੈਠੇ ਸੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਪਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਾਫ਼ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮੰਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵਲੈਤ ਆਉਣ ਦੇ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਸ ਜਵਾਹਰ ਭਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੌਂਡ ਛਾਪ ਛਾਪ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ अगर आपको भी मजा आया वलायत आने का तो जरूर कॉल कर सकते हैं बता सकते हैं अपना स्यापा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कोई मजे की बात आज का दिन आपके लिए क्यों खास है या फिर क्यों आज के दिन का बेड़ा गर्क हुआ है आपका हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा मुझे कहते हैं बस कहते ही हैं काशिफ कहते हैं मुझे सनराइज रेडियो आप सुन रहे हैं 100.6 FM और 103.2 FM और जनाब क्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर में आप सुनते हैं और इसके अलावा आप सनराइज रेडियो .fm के जरिए दुनिया भर में हमें सुन रहे हैं कॉल करने के लिए राबता नंबर अभी बताया नहीं है 01274306666 01274306666 के जरिए आपकी गपशप हमारे साथ होगी लंबी चौड़ी छोटी मोटी किसी भी तरह की गपशप कोई गाना कोई डेडिकेशन कोई रिक्वेस्ट कोई सॉन्ग मेन टाइम गाने का मजा लेते हैं और हम आपकी बातों का मजा लेते हैं और फिर

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 7444 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
5: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना
4: चाचा केड़ा चाचा
5: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
4: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
5: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
6: जी जनाब वेलकम बैक और बैक टू वेलकम आपको करते हैं सनराइज रेडियो पे अपने काशिफ के साथ साथ रहिएगा अकेला ना छोड़िएगा मुझे बताते हैं आपको क्यों उसकी वजह क्या है जनाब हमारे साथ रहे वाजिद भाई हडर्सफील्ड से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपकी कॉल का और आपकी मोहब्बत है आपका प्यार है आप हमारी पूरी टीम को सलाम दुआ और सब सुनने वालों को सलाम दुआ दी जैसे जब्बार भाई जान ने जनाब सलाम दुआ दी सभी सुनने वालों को भी अच्छा जनाब हमारे साथ कीतली से रहे दोस्त और उन्होंने कहा कि जी 4 यार हैं उन यारों के नाम हैं कहते हैं जी मोहम्मद माजिद हैं मोहम्मद आमिर हैं मोहम्मद हनीफ हैं और नैयर शरीफ हैं कहते हैं हम आपको सुनते रहते हैं बड़ा मज़ा आता है बड़ा लुत्फ आता है हम मुस्कुराते रहते हैं एक गिला आपने किया आपने कहा जी पहले तो आपने जब कहा कि 4 यार तो मैंने कहा जी बीच में से मैं किधर गया पांचवा तो आपने कहा नहीं जी आप भी शामिल हैं आप कैसे हमसे अलग हो सकते हैं तो मैंने कहा सरकार ये जो मीठी गोली है ये जेब में रखते हैं या हाथ में रखते हैं मतलब जब जहां चांस मिला तो फिट कर दी गोली दे दी मुझे ये गोली ना दे ना मीठी गोली कहते ना जी गोली नहीं सच में आप तो दिल में और दुआओं में रहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका कीतली से और आप चारों यारों के लिए ये खूबसूरत सा गीत और आप जिस मोहब्बत से आपने शिकवा किया कि जनाब हम आपको हर शो में कॉल करते हैं लेकिन कॉल नहीं मिल पाती तो फिर हमें बड़ा शिकवा होता है चले आज आपका शिकवा नहीं होगा और शिकवा दूर हो गया और जनाब ये आपकी मोहब्बत होती है जिसकी वजह से हम यहाँ पे खींचे चले आते हैं और आज तो जनाब खींचे नहीं आए हैं आज उड़ते हुए आए हैं और पता लगता रहा कि हमारे पर निकल आए हैं नहीं वो वाले पर नहीं जिसपे आप किसी को ताना देते हैं लगता है काशिफ के पर निकल आए हैं नहीं वो वाले पर नहीं निकले अभी पर आपकी बातों से लग रहा है कि निकल आएंगे बहुत जल्दी लेकिन हाँ पर लग गए थे आज थोड़ी सी देर हो गई और उड़ते हुए हम यहाँ पे पहुंचे उड़ते हुए स्टूडियो के जनाब बाहर जो दरवाजा है ना उसमें मुझे लगता है कि मेरे साइज का एक सुराख हो गया है बिल्कुल दरवाजा आर पार करके मैं यहां पे पहुंचा पता आपकी मोहब्बत में क्या करूं उड़ना पड़ता है आपकी मोहब्बत में और मोहब्बत जो है ना वो कहते हैं जब आपको किसी से मोहब्बत होती है सामने वाले को यकीन हो या ना हो अब ये ना पूछिएगा मुझे ये सारी बातें कैसे पता है मतलब बॉलीवुड की फिल्में हमने बचपन से देखनी शुरू कर दी थी हम अभी के खराब नहीं बचपन से खराब हैं खाली आप अपने आप को इल्जाम ना दीजिएगा कि आपने मुझे खराब किया है हाँ आपने किया है 50% हम पहले से खराब थे तो जनाब वो बॉलीवुड की फिल्में देख देख के तो ये प्यार इश्क मोहब्बत की बातें हमें पता है कैसे होती हैं चांद कैसे बादलों में छुपता है कैसे तुम्हें देखें पहली बार तो कुछ कुछ होता है कैसे दिल तो पागल हो जाता है, कैसे हमको हमी से हम चुरा सकते हैं, कैसे राह में उनसे मुलाकात होती है, कैसे चोरी चोरी चुपके चुपके। आपका आना दिल धड़काना, कैसे हमें ये सब समझ है जनाब। ये प्यार मोहब्बत की बातों में कहते हैं कि जिन बातों की समझ नहीं भी होती वो भी आ जाती है, और कहते हैं कि तारे गिनने पड़ते हैं एक टांग को, खड़े खड़े होके चिल्ला काटना पड़ता है, रातें लंबी हो जाती हैं चाहे छोटी हो, तो यही हाल हमारा होता है सात दिन आपकी जुदाई में। तो फिर जिस दिन मुलाकात का दिन होता है उस दिन उड़ते हुए आते हैं यहाँ पे आपके लिए, आप माने या ना माने।

बड़े कमाल हैं आप जवान, बड़े दमाल हैं काशिफ के दिल का वबाल हैं आप। जब कोई आपको ज्यादा कोई प्यारी बातें करता है आपसे तो फिर दिल में वबाल उठता है, है ना जनाब। आप ना वापिस आई, उन्होंने कॉल की, बड़ा अच्छा लगा दोबारा से आपने टाइम निकाला। आपने कहा अब मेरे पास टाइम है, मैं बता नहीं सकती। आपने सॉरी किया जनाब, आपकी कोई पर्सनल बातें जो होती हैं उनके लिए सॉरी ना किया करें। हर किसी को पहली बार आपसे बात हुई तो पहली बार ही आप नहीं, अभी तो दूसरी बार हो गई ना, दूसरी कॉल की आपने और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और हाँ बड़ा अच्छा लगा। और जनाब सॉरी की बात नहीं, हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल बातें हर किसी से शेयर नहीं की जाती हैं। और वो भी मेरे जैसा जिसको आप ऐरा गहरा नत्थू खैरा समझे, तो आपने कहा नहीं नहीं आप गैर नहीं हैं, गैर होते तो हम कॉल आपको क्यों करते। और दोबारा कॉल का वादा किया था, और जब मैं वादा करती हूँ तो निभाती हूँ, पूरा करती हूँ। मैं वैसे वादा

0: वैक्सीन लगन वाली है कोई वैक्सीन या बचपन च मैंने कोई कदी वैक्सीन घट लगी पूछा मैं अपनी मम्मी डैडी को कोई एक अद्धी वैक्सीन तुसी मिस तो नहीं करती मेरी तारा मेरिया शार्ट हो जांदियां ने दिल तेज तेज धड़कन लग पैंदा साह मेरे तेज हो जांदे ने जी ये तो प्यार मोहब्बत की निशानी होती है ना अच्छा ये सिर्फ मेरे साथ हफ्ते में एक बार होता है ये सारी निशानियां वो भी संडे 2 से 5 आपसे बात करते हुए सांसें तेज धड़कन तेज और ऐसी वैसी पता नहीं कहां की बातें करने का दिल करता है पूरा हफ्ता बाकी मैं चुप रहता हूं सच्ची मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूं अच्छा आमना ये आपका कसूर है अच्छा जनाब आमना ने कहा कि अपनी मर्जी का अपनी पसंद के जो गाने हैं आज वो लगाएं मैंने कहा नहीं आप सबकी पसंद भी साथ शामिल होती है और वो भी मैं देखता हूँ कि दोस्त कौन कौन से किस तरह के कुछ बहुत पुराने गीत सुनना चाहते हैं कुछ नए गाने सुनना चाहते हैं आजकल दे आजकल के गाने पता है ना जो सुनने वाले कम और आहो देखने वाले ज़्यादा होते हैं और जो सुनने वाले होते हैं ना वो 80s 70s और ये 90s और 2000 तक के गाने होते हैं लेकिन एनीवेज आपने अब दिल की बात की है आपने कहा अपने दिल के फेवरेट जो आपके दिल के करीब गाने हों वो गाने लगाएं तो वो पहला गाना अभी स्टार्ट करते हैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं अपने दिल के जो करीब लोग हैं जब उनकी याद मुझे आती है तो कुछ गाने मैं गुनगुनाता हूँ अकेले में वो बाथरूम सिंगर होते हैं ना हाँ बड़ा अच्छा बाथरूम सिंगर हूँ मैं वैसे तो उसमें से जनाब वो लोग जो दिल में सीने में दुआओं में ख्यालों में
1: सीने में दिल है
0: यानी कि आप सब
1: ए सनम
0: ये गाना उसमें

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, आज आपको पता लग गया, सीने में दिल, दिल में है जान मेरी, सनम आशिकी करेंगे। तो ये जनाब हमने दे दिया है अल्टीमेटम ऑन एयर सबको, और अब बच सकते हैं तो बच के दिखाएं आप। और जनाब आप सुन रहे हैं काशिफ को सनराइज रेडियो पे। अभी हमने बताना है आपको टाइम के, टाइम इस वक्त कैसा और क्या चल रहा है। टाइम हो चुका है 2:49।
2: सनराइज रेडियो, ट्रेंड सेटर्स इन एशियन ब्रॉडकास्टिंग, वी लीड अदर्स फॉलो।
3: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
4: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा, और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
3: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
4: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
5: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
6: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 3010, ब्रैडफोर्ड 7230 3010।
2: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
7: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
1: जनाब, ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए, सबके लिए होगा। मुझे वापिस आना पड़ता है बार बार, जिस तरतीब से आपकी कॉल्स, आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुंचती है, तो मैं उधार नहीं रखना चाहता हूं। चाहता हूं कि नेक्स्ट आवर में हम नया आगाज करें और जितने कॉलर्स रह गए उनकी कॉल्स शामिल करते जाएंगे। परवीन जी, रब आपको सेहत दे, ढेर सारी दुआएं आपके लिए, और आपकी तरफ से आंटी दीबा के लिए गीत होगा, आपके लिए गीत होगा। आपने कहा मुझे पता था काशिफ आप परेशान हो जाएंगे मेरी बीमारी का सुन के, इसी वजह से मैंने सुनती रही लेकिन कॉल नहीं करती रही मैं आपको। बिल्कुल जी, परेशानी होती है। आप सब जितने अच्छे हैं, जितना प्यार मुझसे करते हैं, जितना अच्छा सलूक मुझसे करते हैं, जितना करीब अपने दिल के दुआओं में मुझे रखते हैं, तो जब आप में से कोई परेशान हो, बीमार हो, थोड़ी सी भी तकलीफ हो, तो आप को बिल्कुल ठीक कहा, मेरा दिल उदास थोड़ा बहुत होता है। आपने बीमारी में जिस तरह मुझसे बात की मेरे सर आंखों पे, और रब आपको सेहत दे, मुझ गुनाहगार की शायद फरियाद सुन ले। और जितने भी बीमार हैं इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आजमाइश में है, आपके घर में कोई बीमार है, रब उसको आपको सेहत दे, और आपकी आजमाइश में और उनकी आजमाइश में रब आप सबको हिम्मत दे। रब की तरफ से होती है हर आजमाइश, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि रब की निगाह में है आप। जनाब मीन टाइम ये गीत आपके लिए होगा परवीन, और इसके अलावा बिंदु, फर्स्ट टाइम आपने कॉल की है मेरे ख्याल में, लेकिन आपने कहा आपकी बर्थडे है और आप सुन रही हैं हमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सनराइज रेडियो को आप कहती हैं कहीं आप मैच देखने जा रही हैं, मुझे नहीं पता कौन सा मैच आपने देखने जाना है आज, लेकिन जहां भी आप सफर में हैं हमें सुन रही हैं, और साथ में आपकी बर्थडे भी है और आप सनराइज रेडियो को सुनते हुए जा रही हैं अपने सफर पे, ड्राइव केयरफुली जहां कहीं भी आप ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों बिंदु की तरह। अगर आपकी भी बर्थडे है, कोई स्पेशल डे है, कोई शादी ब्याह, आपको समझाने के बाद भी लाख अगर आप फिर भी बाज नहीं आए, और अगर आपका ब्याह शादी है आज, तो क्या हो सकता है। अब पता लग जाएगा आपको 2-4 महीनों बाद, लेकिन कोई बात नहीं। मीन टाइम बेस्ट विशेज आपके लिए बिंदु, और एवरीबडी एल्स आउट देयर, एनीबडी एल्स आउट देयर इफ सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे और अ स्पेशल डे, ऑल ऑफ द बेस्ट विशेज फॉर यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। और ये गीत आपके लिए, आपका दिन मजीद स्पेशल बनाने के लिए बिंदु। happy birthday to you and anybody out there celebrating their birthday in this week or today. Happy birthday to you. And this song is coming out to each and everyone from your host, Kashif.

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि टाइम हो चुका है 3:07।
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.

सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 एफएम एंड 103.2 एफएम क्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर डीएबी पे और दुनिया भर में सनराइज रेडियो .fm के जरिए आप हमें सुन रहे हैं जहां कहीं भी दुनिया भर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त जी जनाब, मुझे कहते हैं काशिफ। आप कहें ना कहें, कहने वाले कहते हैं, आप याद करें ना करें, याद करने वाले तो याद करते हैं। आप सुने ना सुने और सुन के भी कहें कि नहीं सुना, पर सुनने वाले तो सुनेंगे, चाहने वाले तो चाहेंगे, सोचने वाले तो सोचेंगे, बात करने वाले तो बात करेंगे। प्रवीण जी, आपने हमें भी खंग दे दी है और मुझे भी हमें वहम सा हो गया। अच्छा, वहम बीमार होने से ज्यादा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है भाई साहब। वहम नहीं होना चाहिए बंदे को किसी भी चीज के बारे में, किसी बीमारी के बारे में। बीमार है तो इलाज करें, किसी बंदे के बारे में वहम हो जाए तो उससे बात करें, दिल में ना रखें बात, मुनाफ़कत होती है। किसी को अपना बनाना है, वहम ना करें। अगर अपना बनाना है किसी को, या तो बनाए ना बनाया तो वहम ना करें। किसी से दूर जाना है तो एक अच्छे पॉइंट पे, अच्छे नोट पे, फिर बाद में वहम वसवसे कि शायद ये होता तो ये होता, अच्छे नोट पे छोड़ें, अच्छी यादों को याद रखें। इंसान जब से दुनिया बनी है, आदम से लेके मुझ नाचीज तक, इंसान खता का पुतला है। कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रहा कि जनाब मेरे पास सर्टिफिकेट है। कोई नहीं कह सकता दुनिया में कोई भी कि ये देखें जी मेरे पास सर्टिफिकेट है रब का दिया हुआ, मैं खताओं से पाक हूँ, गलतियों से साफ हूँ, मुझ में गलतियाँ कोई भी नहीं है, एक गलती भी नहीं हो सकती मेरे अंदर। गलतियाँ हर एक करता है, लेकिन जो अपने होते हैं ना, वो आपको आपकी खामियों समेत, आपकी गलतियों समेत, आपकी कमियों समेत अपना बनाते हैं। लेकिन हजूर आप तो हैं ही बड़े क्यूट म्यूट, हाय आप तो हैं ही बड़े मासूम, आप तो हैं ही बड़े प्यारे। लेकिन एक स्यापा है, उस स्यापे के बारे में अभी आपको बताता हूँ। नहीं सोनिया, आप स्यापा नहीं आपकी कॉल आई थी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहती है कुमार सानू के गाने लगाएंगे ना, मैंने कहा लगा तो रहा हूँ, आप ही का वेट कर रहा था, आप आएंगी तो लगाऊंगा। फिर आप जब नहीं आई तो फिर मैंने कहा शायद लगाता हूँ, शायद आ जाए। फिर मैंने गाना लगाया तो आप आ गई। अब आपकी वो दुखती रगे कमजोरियां मुझे पता लग गई हैं सबकी, बल्कि मुझसे बच के रहिएगा, और किसी का मुझे नहीं पता, मुझसे बच के रहिएगा। मुझे अब पता लगता जा रहा है, आपको समझता जा रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आती जा रही थी जिनसे बात नहीं हो पाई जनाब, ये गाना उनके लिए भी, उनकी मासूमियत के नाम। वाजिद भाई, ये गाना आपके नाम भी, आप भी बड़े प्यारे हैं, मासूम नहीं है शायद, मासूम तो कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सीधा साधा मासूम हो सकता हूँ मुझे लगता है, या ये भी मेरा वहम है। वहम की बातें हो रही हैं ना। अच्छा, कुछ वहम ऐसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन वहम वहम होता है। एक दिन जब वहम निकल जाए बंदे का, तो फिर बाजों का दिल टूट जाता है। कभी आपको वहम होता है ना कि कोई आपके बगैर रह नहीं सकता, कोई आपसे दूर जा नहीं सकता। वहम हुआ कभी आपको कि कोई आपके बिना रह नहीं सकता? ये वहम ना हो, अगर हो तो और कोई वहम हो जाए, पर क्योंकि ये वहम जब टूटता है तो बहुत कुछ टूटता है, बहुत कुछ छूटता है। जो आपने संभाल के अपने दिल में रखा होता है
सबसे छुपा के दुनिया वालों से कि किसी की नजर ना लगे, इस वहम को कि कोई हमारे बगैर रह नहीं सकता। लेकिन ये वहम जब टूटता है तो ना पूछे, आवाज नहीं आती है कुछ टूटने की, मगर बहुत कुछ टूटता है। एनीवेज जनाब, अगर आप भी इसी मासूमियत का शिकार हैं, ये वहम पाले हुए हैं कि कोई आपके बगैर रह नहीं सकता, तो फिर मेरा दिल कहता है कि आपको कहूं कि आपसे ज्यादा मासूम, आपसे प्यारा कोई नहीं है। लेकिन स्यापा यह है, आप कितने प्यारे हैं, कितने मासूम हैं, आपको ये पता ही नहीं है, पर आपका काशिफ आपको बता रहा है।

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

जी जनाब वेलकम बैक और बैक टू वेलकम आपका करते हैं। आप सुन रहे हैं काशिफ गो सनराइज रेडियो पे। जी जनाब हमें आपके अपने बिल्कुल आपका अपना काशिफ और खूबसूरत सा साथ, खूबसूरत सी महफिल, कोशिश की कि सबकी कॉल्स जो काफ़ी देर से मिस हो रही थी वो भी जनाब कॉल्स ली जाएं। अच्छा कुछ दोस्त छेड़छाड़ के लिए कॉल करते हैं। जनाब आप छेड़े, हमने कौन सा छेड़ जाना है? 809 जनाब आपका शुक्रिया। और जनाब जो कॉल्स छेड़छाड़ के लिए कर रहे हैं उनको कहूंगा कि जनाब आप लाइन बिजी कर देते हैं उन दोस्तों के लिए जो सच में हमसे बात करना चाहते हैं, छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं, वो दिल से इंतजार करते हैं पूरा वीक जैसे हम इंतजार करते हैं। कुछ हमने आपको दुआएं देनी होती हैं, कुछ उनसे दुआएं लेनी होती हैं, कुछ उन्होंने हमें दुआएं देनी होती हैं, तो आप उस राह में रुकावट बनते हैं जब आप एवें ही पता नहीं कितना वेला टाइम है आपके पास, आप कॉल पे बात भी नहीं करते हैं और बस लाइन जो है ना हमारी वो ब्लॉक करके रखते हैं। चले ये भी एक अंदाज है आपका, मोहब्बत तो करते हैं इजहार नहीं करते, शायद आप उस तरह के बंदे हैं, डरते हैं किसी से। मुझसे तो नहीं डरते, नहीं डरते। अच्छा जनाब जो हमसे नहीं डरते हैं सिर्फ रब से डरते हैं लेकिन हमसे प्यार करते हैं उनमें है जनाब चौधरी रुखसार भाई जान, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी रुखसार भाई, आपने बड़ा हंसाया। आपने कहा काशिफ भाई मैंने फिर गलती की, जनाब गलती नहीं अब तो गलतान है वड्डा सा। पहले मेरी बात हुई थी जब बार भाई से उनसे पूछ के मैंने गलती की कि जनाब कमते हो या गार हो, अभी फिर मैंने पूछा कमते हो या गार हो जबार भाई से, उन्होंने फिर वही जवाब दिया। उन्होंने कहा यार अभी थोड़ी देर पहले आपने लास्ट आवर में कहा था कि यूके में लोग काम करने आते हैं मनते मुरादे चादरें चढ़ा के देगे वंड वंड के नफल सुख सुख के, तो फिर हम घर कैसे बैठ सकते हैं, हम भी काम पे हैं पाउंड छाप रहे हैं। लेकिन आपने खूबसूरत हंसी मजाक में एक खूबसूरत बात भी ऐड की, आपने कहा देखें हम यहाँ पे मेहनत करते हैं तो हमारे पाउंड छापने से बहुत सारे जो रब ने हमें वसीला बनाया हुआ है बहुत सारे लोगों का फैमिलीज का, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है, बड़े कर्म वाली बात है, बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है कि जब कोई इंसान किसी को किसी के लिए वसीला बनता है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, इसको मैं महसूस करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मुझे पता होता है कि आपके और रब के दरमियान हम एक वसीला होते हैं आपको एंटरटेन करने का, आपका दिल बहलाने का, आपकी सोचों से, आपके गमों से, तकलीफ़ों से, आपकी बीमारियों से, आपके जितनी भी परेशानियाँ उनसे आपको थोड़ा सा आपका ध्यान आगे पीछे करने के लिए एक वसीला होते हैं हम, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो वसीला कोई कोई इंसान किसी किसी का बनता है और ये रब किसी को तौफीक देता है तो कोई वसीला बनता है, वरना हर कोई किसी की जिंदगी में सुकून का, राहत का, आसानियों का वसीला नहीं बनता है। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। अच्छी बातें हुई चौधरी रुखसार भाई से, शुगल में बातें शुरू हुई और अच्छे नोट पे दुआओं के साथ हमेशा की तरह बातें खत्म हुई। अच्छा जी जब दुआओं की बात आती है, प्यार मोहब्बत की बात आती है तो शमरेज भाई भी शामिल होते हैं और ढेर सारी दुआएं लेके आते हैं, ढेर सारी मोहब्बत लेके आते हैं हमारे लिए। कई बार हम लाजवाब से हो जाते हैं कि उनकी मोहब्बत का, उनके प्यार खलूस का जवाब किस तरह से दें, बस दुआएं देते हैं उनको और उनसे ढेर सारी दुआएं लेते हैं। काम पे होते हैं लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं हमारे लिए, बड़ी इज्जत देते हैं। रब आप सबको इज्जत दे जो हमें इज्जत देते हैं, रब आपकी इज्जतों में इजाफा करे, आमीन। तो ये गीत आपके लिए होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई और बाकी दोस्त बहन भाई जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, कॉल कर पा रहे हैं। आपकी कॉल अगर मिल नहीं सकी या आप कॉल नहीं कर पाए मगर सुन रहे हैं, आप सभी के लिए भी जनाब सारे के सारे मेरे गीत, मेरे सारे का सारा टाइम, ये सारे लम्हे, ये सारा खलूस, ये सारा जोर जो हम लगाते हैं दिलो जान से आपको एंटरटेन करने के लिए, ये सब कुछ आपके लिए है। बेशक आप कॉल ना भी कर पाए कोई बड़ी बात नहीं, मेन बात है कि आप हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा जनाब सामिया ने कहा कि उन्होंने बड़ा जोर लगाया कॉल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए,
बहुत बहुत शुक्रिया सामिया, आपका इतना सा जोर लग गया। हाय, पूरा हफ्ता आपने खुराकें खा के जनाब ये जोर इकट्ठा किया और आपका एक ही झटके में, एक ही दिन में ये जरा जोर लग गया हमसे बात करने के चक्कर में। आप हंस रही हैं इस वक्त, मुझे पता है। हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, क्योंकि हमने भी आपको ढेर सारी दुआएं दी हैं, जैसे आपसे दुआएं लेते हैं आप। हलीमा जनाब कहती हैं, काशिव मेरी तो हाय हाय। मैंने कहा क्या हुआ, हाय इतनी क्यों डाल रही हैं? कहती है जनाब, काशिव जो भी गाना आप लगा रहे हैं आज, अपनी पसंद का या जिसकी भी पसंद का, सारे गाने, हर गाने के साथ मैंने यही कहा हाय ये गाना भी मेरा फेवरेट है। जनाब आपका फेवरेट गाना और हमारा फेवरेट गाना एक है जनाब, आप फिक्र ना करें, सारे गाने आपको मजाक देंगे, क्योंकि हम शामिल, किसी की रिक्वेस्ट हो या मेरे दिल की बात हो तो वो गाने की सूरत में आपके लिए पेश तभी करते हैं जब हमें उसमें कुछ महसूस, कुछ फीलिंग्स उसके साथ, कुछ यादें अटैच होती हैं, वरना मैं गाने लगाता नहीं हूँ। वैसे आप रिक्वेस्ट भी करते हैं तो गाना वही मैं शामिल करता हूँ जिसमें कोई दम हो, ये बात याद रखिएगा। और जनाब हमारे टिकटॉक के जो एक मेरी फैमिली है वहाँ पे जनाब, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, वहाँ पे भी मुझे मैसेजेस आते हैं और वो भी सनराइज रेडियो को ट्यून इन करते हैं। नफीस भाई आपके लिए ये गीत होगा, क्योंकि आपने भी हमें दिल से बहुत टाइम देते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और सनराइज रेडियो भी ट्यून इन करते हैं और सुनते हैं। जनाब ये गीत फिर आपके लिए भी, हमने भी आपको दिल से दुआ दी है। आप भी वैसे दिल से हमें कुछ दुआ देते हैं या सिर्फ दिल ही में रखते हैं?

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 7444 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा। इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: Sophie Jewelers, 119-2121, Oak Lane, Bradford 9, telephone 01274-056-014. Sophie Jewelers.
0: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
5: Jinaba, welcome back. Back to welcome after the break. You are listening to your host, Dost Kashif, on Sunrise Radio, 100.6 FM and 103.2 FM, across West Yorkshire. And anywhere in the world, if you are listening, sunriseradio.fm. This song is coming out to you. And of course, Samia hamare saath hai. Bilkul hamare saath hai. Hamesha saath rehti hai. Chahe wo TikTok ho, Sunrise Radio ka show ho. कभी कभार हम बिजी होते हैं, वीडियोस नहीं लगा सकते हैं डेली के बेसिस पे, तो सामिया हमें बड़ा गिला करती हैं, शिकवा करती हैं, जैसे हलीमा हमारा इंतज़ार करती हैं, नफीस इंतज़ार करते हैं, बहुत सारे दोस्त जनाब वो फिर हमें पुश करते हैं कि जनाब वीडियोस लगाएं, फिर हमें लगानी पड़ती हैं वीडियोस। आज बहुत बिजी रहा तो सामिया आज के लिए माजरत है, क्योंकि संडे मेरा होता है रेडियो पे, टिकटॉक की तरफ से ध्यान थोड़ा कम होता है, वहाँ पे टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन वहाँ अगर हम ध्यान नहीं पाते हैं, दे नहीं पाते हैं तो हमारे जो टिकटॉक वाले दोस्त हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे गपशप रहती है आपके साथ। तो सामिया, आपसे हम हमेशा पूछते हैं हर वीक के आज कौन सा गाना सुनेंगी, तो सामिया ने ना कोई एक या दो गाने सोचे हुए होते हैं और बड़े यूनिक उनकी चॉइस होती है, बड़ी चेयरफुल गानों की चॉइस होती है। मोस्टली वो रोज किला और बिलाल सईद को पसंद करती हैं। आज तक हमें नहीं बताया उन्होंने मुझे वो पसंद करती हैं कि नहीं है एज एन एंटरटेनर। हाँ, हौसला तो बहुत बढ़ाती हैं, सपोर्ट भी करती हैं, हमारी टिकटॉक की हर वीडियो को लाइक भी करती हैं, कमेंट्स भी करती हैं, रेडियो पे हम आते हैं यहाँ भी हमारे साथ साथ होती हैं, बिल्कुल अभी भी हमारे साथ हैं, लेकिन कभी बताया नहीं कि वो जनाब हमें भी कितना पसंद करती हैं, या बिलाल सईद या रोज किला उनसे ज़्यादा या उनसे कम या उनके बराबर। चलें, ये अभी मुझे पता है वो अभी उनको एकदम से कॉल मिलाएंगी या फिर हमें मैसेजेस आएंगे टिकटॉक पे, तो वो कि बताएंगी हमें सच क्या है। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लग पड़ा है। अच्छा, मैंने बताया कि हमारे साथ नहीं, लेकिन कॉल उनकी कट गई, अभी वो दोबारा शामिल होंगी यकीनन, वरना मैसेजेस पे साथ होती हैं हमारे, वो दिन में उनके 15-20 मैसेजेस आते हैं। ये भी एक अंदाज होता है ना आपके अपनों का, आपके जो जितने भी दोस्त अहबाब होते हैं, बहन भाई होते हैं, फैमिली की तरह होते हैं, वो सारे आपसे इसी तरह प्यार करते हैं, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं अपने, इसीलिए तो फैमिली यही तो होती है। फैमिली कोई दावों का नाम नहीं होता, बड़े बड़े फैमिली जनाब जो होती है आपकी, खून का रिश्ता ना भी हो तो जो निभाने वाले होते हैं ना, वो ये नहीं देखते हैं कि आपकी ज़ात क्या है, आपकी बात क्या है, आपका नस्ल क्या है, आपका शजरा क्या है, आप किस रंग के हैं, कितने ऊंचे लंबे हैं, कितनी बैंक बैलेंस है, कितनी आपके जो सोशल स्टेटस है आपका वो कितना बड़ा है, आपने पेंट कोट टाई पहना है कि नहीं पहना है, सूट बूट है या फ़कीर से हैं, हकीर से हैं काशिफ की तरह। जो दिल वाले होते हैं वो साथ निभाते हैं और सामिया उनमें से एक है। सामिया, इतनी बार तो मैंने आज तक किसी का नाम नहीं लिया, आपका नाम लिया, कैसा फील हो रहा है आपको? ऑनर्ड, यू डिजर्व इट, कसम। सो एनीवे, सामिया का पसंद का गाना मैं भी सुनता हूं जब तक वो दोबारा आती हैं, और आपको भी सुनवाते हैं।

हाय अल्लाह जी की करा ते की ना करा कसमे ठंडा पानी पी पी इस गर्मी च हूं मैं मरा की करा ते की ना करा दसो अपनी खुशी आपके साथ शेयर किया तुसी सड़ना ते सड़ो दुआ करनी है ते दुआ करो जो करना करो अपने खर्चे से सलमान खान नहीं कहता हों डू व्हाटएवर यू वांट टू बट नेवर डिसरिस्पेक्ट योर मदर सो जनाब डू व्हाटएवर यू वांट टू सड़ना सड़ो खुश होना खुश होवो सामिया का फैसला आ गया जे और सामिया का फैसला आते ही जनाब एक नशा सा चढ़ गया और जनाब हलीमा आई हमारे साथ हलीमा ने शॉर्ट एंड स्वीट कॉल की थैंक यू सो मच हलीमा एक बार फिर अच्छा हलीमा भी सारा दिन मेरा पीछा करती है सारा दिन मेरे आसे पासे होती है जो बात है वो कहनी पड़ेगी डंके की चोट पे जमाने के सामने अब्बा जी मेरे कहंदे होंदे सन जमाने को तुसी रोटी लैके खांदे हो रोटी रब देंदा रब को डरिया करो जड़ी गल है वो है अब किसी को हजम नहीं होती है तो वो हाजमे की दवाई खाए ना अब काशी बाप का अल्लाह ने बनाया इतना प्यारा दिल का तो फिर जो प्यार करने वाले हैं वो तो प्यार करते हैं ना तुसी ना करो सानू कोई फर्क नहीं बरानी वे जनाब अली मां आपका प्यार है मोहब्बत है खलूस है आपने भी हमारा दिन बना दिया नशा हो गया बिल्कुल नशे सी चढ़ गई अब चढ़ गई है तो चढ़ गई है नशे सी जनाब मुझे नहीं तो और किसे अरिजीत सिंह जी को जनाब अरिजीत सिंह जी को समझ लग गई है हमारे दिल की बात हलीमा नशे सी चढ़ गई सामिया नशे सी चढ़ गई

0: ना काशिफ की तंग करो छेड़ो काल बानी है तो माड़े यार सीधी सीधी काल करो तो लैना बिजी ना करो बहुत चंगा लगा वही भाई तुसा ना गल करी कहता तुसा आख्या कि जनाब कोई गाना ऐसा लाओ कि बन्नी छोड़ो मैं एक ही जहा गाना होना अरे ये ओ जहा गाना होना भी जिस तरह तुसा गल्ला करने हो ना तो बन्नी छोड़ने हो ये मिकी पता ही नहीं सी भी माड़ी गल्ला नाल तुसा बन्नन होने हो तो ये अने गाना भी इहो जहा लाओ कि बन्नी छोड़ो कम्मै की अने बुझने पे तो आवाज तुसा नहीं तो कम्मै की चंगा तुसा के चाही के रखे ठीक है जनाब कम्मै की बन्नया भी है असा चाया भी है एडिया सारिया गल्ला करी छोड़िया तुसा तो मी तो पता ही नहीं लगा मैं तो दिले नहीं जड़े रोले ना तो दिले दिन गल्ला वह बाना पियाँ तुसा नाल लेकिन ये हूँ तुसा सारे एडे सारे माड़े पर इल्जाम लाए न बनने आले ते चाहने आले ते ये ता हूँ फिर तकने हैं जनाब गाना भी हूँ तुसा एडिया तरीफा कीतियाँ तो गाना मैं कुतू लोड़ीता आवा हूँ जाना मैं कुदरों गाना लोड़ीता आना तो जनाब तुसा वास्ते लाना क्योंकि तुसा भी जिस तरह माड़ी तरीफ की ना तो बन्नी तुसा भी मिकी छोड़िया वैसे ये गल मैं दसा चलो जनाब मिलते हैं आपसे वो बनने वाले गाने के साथ वो कैसा गाना होता है वो सुनिएगा आप लेकिन पहले
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: लेकिन जनाब बनने बनाने से पहले आपको बताएं कि टाइम हो चुका है 3:49.
2: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
3: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
4: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
3: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
4: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
5: Official media partner, Sunrise Radio.
6: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है
7: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
6: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
7: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 telephone 012744-644-46
2: Sunrise Radio trendsetters in Asian broadcasting we lead others follow it's a classic hit flashback as we go down memory lane where were you when you first heard this

0: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
1: जी जनाब, सनराइज रेडियो के स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं। टाइम हो चुका है 4:07।

जनाब आप भी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि काशिफ को क्या हो गया। काशिफ को आपसे प्यार हो गया। प्यार हो तो छुपाना नहीं चाहिए, प्यार है कोई गुनाह तो नहीं। बंदे ने भी रब से प्यार किया, रब ने अपने बंदे से प्यार किया। प्यार में अगर प्यार इंसान हर किसी से करता है, सोचा जाए तो जब दुनिया शुरू हुई हम एक थे, एक होना चाहिए, एक रहना चाहिए, एक हो के इत्तफाक से रहना चाहिए। आप हमसे अलग नहीं है, हम आपसे अलग नहीं है, मेरी इस बात को सोचिएगा। अगर सोचेंगे समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप मुझसे जुदा नहीं है, आप मैं हूं, मैं आप हूं। पढ़ी लिखी बातें इसलिए कर रहे हैं कि जनाब बिंदु आपने हमें कॉल की, वंस अगेन थैंक यू सो मच। एंड अपनी मंजिल पे आप पहुंचने वाली हैं खैर खरियत से। आपने हमें बताया कि आप एक डॉक्टर हैं, क्या बात है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कॉल की हमें बताने के लिए कि पूरे रास्ते में आपने शो के आगाज में हमें कॉल की थी, गालिबन आपकी दूसरी या तीसरी कॉलर थी आज के शो की आप, और आपने हमें बताया था कि आपकी बर्थडे है जनाब, आप बर्थडे आपकी बड़ी अच्छी जा रही है, आपकी फ्रेंड्स आपके साथ हैं खास तौर पे। तो डॉक्टर बिंदु जी आपने एक कॉम्प्लीमेंट दिया जो कि मेरा पूरा वीक आपने बना दिया। आपकी फ्रेंड की बात करेंगे, उनसे आपने बात करवाई, बहुत शुक्रिया, वो भी सुन रही हैं। बाकी फ्रेंड्स भी आपकी साथ हैं, उनके लिए भी ये गीत होगा। लेकिन डॉक्टर बिंदु जी ने जनाब एक कॉम्प्लीमेंट दिया है जो आपके साथ शेयर करना, खुशी की बात हो तो सबके साथ शेयर करना चाहिए। जैसे आपको याद है आप बचपन में आपको कोई ट्रॉफी, कोई अवार्ड, कोई मैच जीतते थे, कोई क्लास में आपको कोई मैच में मैन ऑफ द मैच या क्लास में वर्ल्ड चैम्पियन आप बनते थे, या आपको कोई भी अवार्ड मिलता था स्कूल की तरफ से, क्लास की तरफ से, सबसे पहले बंदा अपने प्यारों से शेयर करता है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार हो, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी फैमिली बड़ी खुश होगी, आपकी खुशियों में शामिल होगी। सड़नगे नहीं, जैलस नहीं होंगे, जैलस तो दुश्मन होते हैं, मुनाफिक लोग होते हैं, आप तो खुश होंगे ना। तो जनाब डॉक्टर बिंदु जी ने कहा कि हमने दोबारा आपको कॉल की, उसकी दो वजह हैं। एक तो बताने के लिए कि जनाब हम अब जाने लगे हैं जहाँ पे हम कहीं मैच देखने आप जा रही हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, एंजॉय कर रही हैं, हैविंग अ स्पेशल डे, बर्थडे आप मना रही हैं, अपनों के इर्द गिर्द जनाब अगर स्पेशल डे मनाया जाए तो और ख़ास हो जाता है। सो इससे पहले कि आप चली जाएं अपनी गाड़ी में से निकल के, और आपने हमारा खूब साथ निभाया, तो ये गाना आपकी और आपकी फ्रेंड्स के नाम होगा। लेकिन आपने जो कम्प्लीमेंट दिया, आपने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन यकीन करें आप भी एक डॉक्टर का ही काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो कैसे, तो कहती हैं कि इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया कि हमें पता ही नहीं लगा हमारा सफर कैसे कट गया। हम सारे गपशप कर रहे थे लेकिन आपको सुनते सुनते गपशप कर रहे थे, और आपने हमें बहुत एंटरटेन किया, एंड यू हैव मेड माय डे इवन मोर स्पेशल। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। और यही कॉम्प्लीमेंट मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो जो है ना सीरियसनेस का एहसास दिलाता है कि कहाँ कहाँ से, किस तरह के, कितने बहन भाई दोस्त अहबाब अपने मेरे सुन रहे हैं और किस तवज्जो से आप सुन रहे होते हैं। तो दुआ है कि रब कभी भी मेरी ज़ुबान से कोई ऐसा वैसा लफ्ज ना निकले जो आपके दिल को गिरा गुजरे। जिस नीयत से मैं शो करता हूँ, आके महफिल सजाता हूँ, उस नीयत के मुताबिक रब मुझे इज्जत दे, आपके दिलों में जगह दे, आमीन। और जनाब बहुत शुक्रिया बिंदु, और बिंदु के साथ जनाब मीना, आपने हमसे बात करने के लिए जोर दिया तो डॉक्टर बिंदु जी ने इसलिए हमें कॉल की। तो मीना जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड आपने कहा कि आपसे बात मैंने करनी थी ज़रूर, क्योंकि आप जिस तरह से हमें एंटरटेन करते रहे पूरे रास्ते में, और सबको आई जस्ट वॉन्ट टू से वेल डन टू यू, एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच मीना, यू गाइस हैव मेड माई डे एंड इवन मेड माई वीक फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। May Allah bless you, lots of happiness. Ameen. Thank you. जो दूसरों को खुश करते हैं, दूसरों को सपोर्ट और दूसरों का दिल बड़ा करते हैं, वो खुद बड़े इज्जत वाले और दिल वाले होते हैं, रब का उन पे करम होता है। और जिन पे रब का अजाब होता है, वो उनके दिलों में कदूरत, नफरतें सड़ रहे होते हैं, मुनाफ़िकत के वो जो है ना उनके दिल में बोझ सा उनके दिलो दिमाग में होता है, वो लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाते, तो ये रब का अजाब होता है। वो कहते हैं ना, पता नहीं अगले जहान में अजाब मिलेगा, इस दुनिया में भी लोगों को अजाब मिलता है जिनके दिलों में नफरतें होती हैं। दिल एक खूबसूरत सी चीज़ है,
खूबसूरत सा ऑर्गन है, उसको दिल दिमाग को रब के शुक्र से पुर रखे, रब के बंदों की मोहब्बत से पुर रखे, नफरतों की जगह कैसे देते हैं आप लोग। बाय एनीवे मीना थैंक यू सो मच एंड दिस सॉन्ग इज कमिंग आउट टू यू मीना बिकॉज यू आर द वन हु आस्क्ड बिंदु जी to ring me once again. So this song is for you, for your friends and everybody out there listening Sunrise Radio. Is gaane ka ek bhi lafz mujhko to samajh nahi aayega, angrezi mein hai, so I don't understand angrezi. As long as you guys are gonna enjoy and understand every bit of this song, that's enough for me.

0: Of course, she said, I know you are hurt, but I'm gonna make you forget all. Ride it. Beautiful track indeed is coming out to you. Bindu, Meena and friends, and of course each and everyone out there listening Sunrise Radio with your host dost Manu Kashif kende ne. और हलीमा जी अभी ब्रेक के बाद आपका गाना थोड़ा लेट हो गया क्योंकि का पता नहीं है लेकिन आपने कहा जान मूवी से गाना लगा दें और जो गाना आपने फरमाइश किया है वो जनाब अब फरमाइश नहीं रही वो खास हो गया है गाना हमारे लिए और गाना तो मैंने क्यों ही नहीं किया है ये मैंने क्या किया है और जनाब असल में क्या हुआ कि बड़ी देर के बाद मुझे थोड़ी फुर्सत मिली आराम से कोई गाना सुनने की और क्योंकि कॉलर्स एकदम से थोड़ी सी लाइंस क्वाइट हुई तो मुझे वो गाने में मैं खो गया उसके लिरिक्स में मैं गुम हो गया और बड़ी जल्दी से वो गाना मुक गया या गाना छोटा था या हम ज़्यादा दूर निकल गए थे इस गाने के बोल सुनते सुनते तो अभी देखें मुझे अंग्रेज़ी समझ नहीं आती है तो मैं इतनी दूर निकल गया इस गाने में खो के अगर समझ आती होती मुझे अंग्रेज़ी तो फिर तो तुसी मैनू लभदे ही रहना सी काशिफ कित्थे टुर गया गवाच गया एनीवेज जनाब अभी गाना होगा हलीमा के लिए उनका फेवरेट गाना और आप भी सुन सकते हैं इंजॉय भी कर सकते हैं ठीक है
1: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 3030
4: Looking for a quality home to rent?
5: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
4: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

जी जनाब, कुछ कॉलर हमारे साथ रहे और उन्होंने दिल जीत लिया आपका। काशिफ, आज मेरे सीने में बस कुछ धड़क रहा है लेकिन दिल नहीं है। आज मेरे सीने में कुछ धड़क रहा है लेकिन दिल नहीं है। अब मेरे सीने में आपका प्यार है, ये दिल नहीं है। मेरे सीने में आपकी मोहब्बत है। इफ्तिखार भाई, ओह यार, आपने मुझे मेरे लिए इतना कुछ कहा, आप खुद रब की ब्लेसिंग हैं। कुछ लोग ब्लेसिंग होते हैं ज़मीन पे लोगों के लिए, इंसानों के लिए, फॉर ऑल द ह्यूमन काइंड, दे आर लाइक ब्लेसिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल यू मस्ट सी अराउंड, यू विल सी देम थ्रू, यू विल फील इट दैट दे आर नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग, दे आर ब्लेसिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ फॉर रेस्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन एंड ह्यूमन काइंड। And Iftikhar bhai, you are one of them. Whatever you have said about me, I don't believe it. But I do believe that you are a true blessing, my brother. क्या कुछ आपने कहा? आप इस वक्त टाउन में हैं, इंटरचेंज पे हैं, एक बस का अपनी का वेट कर रहे हैं, और साथ में आप शुरू से मेरा टाउन में जहां भी आप गए, आपने कहा मैं शुरू से आपका शो सुन रहा हूं। Wow. You literally made me emotional today. Trust me. I'm trying my best to become an emotionless person. Honestly, I've seen, like Auntie Deepa have said, that Kashif, in this young age, you have seen the world. And I feel like the way you, whatever you say, I feel like you have earned, you have learned so much wiseness, so much wisdom. But I don't agree with you, Aunty Deepa, as well. मैं बस बातें करता हूँ जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने समझा। लेकिन इफ्तिखार भाई ने वो बात की, उन्होंने कहा मैं शुरू से आपको सुन रहा हूँ और आपकी बातें काम की बातें होती हैं। यही कहा ना आपने, अल्लाह गवाह है। सच में अगर आपका यकीन रब पे है जिसके कब्जे में हमारी जान है, तो इफ्तिखार भाई ने कहा तुसा नहीं जी गल्ला होनी है, कम्मे नहीं गल्ला होनी है, ते उन्ना की सुनी के कुछ ना कुछ बंदा सीखना, ते मैं तुसा नहीं गल्ला बुझना रहा, तुसा गाने भी लाने हो लेकिन गाने नू ज्यादा मिकी तुसा नहीं गल्ला चंगियां लगनियां, ते जे समझो इन्ना गल्ला की, ता उन्ना गल्ला च बहु कुछ है, करज है, हौसला है, बहु कम्मे नहीं गल्ला न सीखने की, बहु कुछ मिलना, तुसा बहु कुछ आख्या, तुसा मिकी यकीन करो इमोशनल, दिल मेरा इमोशनल हो गया। एंड आई ट्राई माई बेस्ट नॉट टू गेट इमोशनल फ्रॉम नाउ ऑन इन माई लाइफ, फॉर यू नो, क्योंकि इमोशनल हो के आप बहुत सारी कुछ बातें कह जाते हैं जो मैंने जिंदगी में बहुत बार एक्सपीरियंस की हैं। आप सच बातें कर जाते हैं और सच हर किसी को हजम नहीं होता है। कई बार मैंने रेडियो पर भी सच बातें की, बहुत सारी ऐसी, ये बाकी सारी बातें तो सच होती हैं, लेकिन इमोशनल होकर जो सच्ची बातें करता हूं उसके लिए मुझे जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा भुगतना पड़ा जो मैं डिजर्व नहीं करता था, लेकिन वो मेरे रब ने, लोग समझते होंगे कि किसी की साजिशों ने, किसी की मना

जिस महफिल में लोग आपको गिराने की कोशिश कर चुके होते हैं पास्ट में, जो मुझे बहुत सालों से जानते हैं वो मेरी बात को समझ के होंगे। वतइज्जत मंतशा वतजिल्लत मंतशा, ये बंदे का वहम है, ये हमारी खाम ख्याली है कि हम किसी को इज्जत दे सकते हैं, किसी को स्टार्स लगा सकते हैं, किसी को जिल्लत दे सकते हैं, किसी के बारे में चुगलखोरी गइबत बुराई करके हम किसी के किरदार को गंदा कर सकते हैं, किसी को किसी के दिल से निकाल सकते हैं, किसी को किसी की दुआओं से धक्के मार के निकाल सकते हैं। किसी को अगर कोई दुनिया प्यार करती है इतना, उसको इतना गंदा करके लोगों के दिलों में प्यार की जगह नफरत डाल सकते हैं, ये हमारी गलत फहमी है। फिर से कहूंगा, वतइज्जत मंतशा वतजिल्लत मंतशा। रब ने ये कुछ चीजें, रिजक, जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, नफा, नुकसान, इसीलिए रब ने अपने हाथ में रखा इसका कंट्रोल। वरना बंदे तो बंदे को इज्जत लेते हुए, नाम रोशन करते हुए, अच्छा खाते हुए, अच्छा पहनते हुए शायद देख ही ना पाते कि कोई किसी को इतना प्यार करता है, हमें क्यों नहीं करता। ये छोटे दिल की सोच है। रब पे यकीन और तवक्कल ना होने की एक निशानी है कि हम बंदों से एक्सपेक्ट करते हैं इज्जत, प्यार, जबरदस्ती। रब से नहीं मांगते हैं लोगों के दिलों में जगह, लोगों के दिलों में प्यार और लोगों के दिलों में इज्जत। बाकी रह गया नाम। नाम यहां पे रेडियो में मैं 10 बार लेता हूं अपनी महफिल में, फिर भी मुझे पता होता है दिल ही दिल में नाम मैं अपना ले रहा हूं। आप सुन रहे हैं अपने काशिफ को, लेकिन मेरे दिल में ये बात होती है कि मेरे रब का नाम हमेशा रह जाएगा, हमेशा रहने वाला नाम, किसी का नहीं, काशिफ का भी नहीं, मिट जाएगा नाम। हमसे 100 साल 150 साल पहले जो लोग आए थे, आज उनको कोई जानता भी नहीं। मेरे दादा तक का नाम मुझे पता है, मेरे परदादा का नाम मुझे पता है, मेरे परदादा के, मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर का क्या नाम था मुझे नहीं पता, आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर का नाम क्या था आपको नहीं पता होगा। बहुत सो का सबको पता है, आपने दादा, ग्रैंड डैड और ग्रेट ग्रैंड डैड तक का नाम पता है, या ग्रेट ग्रैंड मॉम तक का नाम पता है। इस बात को करने का मतलब यह है कि हमेशा नाम रब का रह जाएगा। इफ्तिखार भाई, हाय, अब खुश आप, अब तो आपका दिन बन गया होगा। आपने बड़ी प्यारी बातें मेरे लिए कही, लेकिन मैं उनके काबिल नहीं, लेकिन आपको मेरी बातें समझ लगी, शायद इसलिए आपने इतना प्यार दिया, कॉल की, जोश में की, पैशन में की, प्यार में की, मोहब्बत में की, एक साथ बन गया 3 घंटे से। आपको लगा मैं गैर नहीं, आपका अपना हूं, आपसे रहा नहीं गया। आप टाउन में बस का इंतजार करते करते, शुरू से टाउन में थे आप, सुन रहे थे, और फिर आप वेट करते करते बस का, आपने मुझे कॉल की, फिर मुझसे इतनी प्यारी बातें की, मोहब्बत की, मेरा दिल बड़ा किया, मेरा दिन बना दिया, मेरा वीक बना दिया, अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बत में मुझे जगह दी, मुझे मेरी उजरत, जैसे मैंने कहा ना, ये मैं खुदा वास्ते काम करता हूँ, इसकी मैं उजरत नहीं लेता ना मैं लूँगा। रब की मखलूक को खुश करने आता हूँ, मेरी नीयत मेरा रब जानता है, मैं अपने रब से इसकी उजरत लूँगा और लेता भी हूँ। मेरा रब मेरी ज़िंदगी में बरकतें डालता भी है, जैसे आंटी दीबा ने कहा। कोशिश होती है, जैसे इफ्तिखार भाई को लगा मेरी बातें कुछ काम की होती हैं। अगर आपको मेरी बात काम की लगी हो, ये वाली भी आखिरी बात, दिल को लगी हो, खरी बात लगी हो, किसी हकीर से, फकीर से बंदे की बात बिल्कुल फकीरी की बात लगी हो, कोई है पागल दीवाना आज भी इस दुनिया में, ऐसे लोग दुनिया में अभी भी हैं जिनकी वजह से दुनिया कायम है, और वो लोग आप हैं, मैं नहीं। आपको अगर हमारी बातें दिल को लगी हो, दुआओं में याद रखिएगा। घड़ियान पहुंची जुदाइयों की, बछड़ों की, आपसे दूर जाके आपके पास, आपके दिल में रहने की घड़ियान पहुंची। अपनी यादों, बातों, चाहतों, सबसे बढ़ के अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी गुजारिश, हाथ जोड़ के, रब के बंदों की जिंदगी में

0: आसानियां पैदा करें, मुश्किलें ना खड़ी करें उनके रास्ते में। रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा, मौजज़े आपकी जिंदगी में आप देखेंगे अगर रब के बंदों की जिंदगियों में आसानियां लाएंगे। आपकी और मेरी मुलाकात फिर से होगी नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अपना बड़ा खास ख्याल रखिएगा, आपका और मेरा, मेरा और आपका, अल्लाह ने के बाद।
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
4: कुलो नफसें जायकतुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30, that's Bradford 7230 30.
6: Sunrise Music.
2: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488

0: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा। इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 Oak Lane, Bradford 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: पहला जी वेख्या युद्धवीर माणक ने अपने महबूब की तुलना चानना करके उसकी किवें तारीफ की आ।
1: पर किसी होर नूं ना कह दी उन्हें तारीफ तरूफ नहीं की उल्टा उसकी बेइज्जती की।

0: कमलियां नूं किवें समझाइए कि अज दे साइंसदानां ने राकेट राहीं चन्न ते उपर जाके सिद्ध करता
1: की
0: कि चन्न कोई सोहणा सुनखा नहीं है, एवीं चिबखड़बा जिहा ही आ। कहिंदे आ इक वारी इक बघेल सिओं जट ने ऊंट चारन लई इक बिहारी भइया नौकर रख लिया। भइया सवेरे सवेरे ऊंट नूं लै जा करे ते शाम नूं चार के घर लै आया करे। एक दिन की होया, गर्मियां दी रुत्ते ठंडी ठंडी हवा चलदी सी ते दरख्त थल्ले पए दी भइये दी अख लग गई ते उधरों बघेल सिओं दे ऊंट दी चन्नन सिंह की बोती नाल अख लड़ गई। चोरी चोरी मिठिया मिठिया प्यार दियां गल्लां करदे ऊंट ते ऊंटनी किलो दो किलोमीटर गाहां निकल गए। जदों भइये की अख खुली उन्हूं तां पै गई भसूड़ी भी भाई मेरा तो ऊंट चोरी हो गया। डर गया भी मैनूं तां जट कुट कुट के मार दूं, वह तो अपनी बिहार वाली गड्डी लग्या फड़न। फिर भी चेता आ गया भी भाई मैं तो अपना एड्रैस दिता होया जट नूं, होर ना कितें मगरे आ के मैनूं कुट्टे।
2: फिर भइये ने सुनेहा भेजता
0: कोई सुआह भेजना सी। भैया बेचारा बिंद रखी वांगू ना उहदा अता जाणदा ते ना उहदा पता जाणदा। ना तां भइये नूं इह पता कि ऊंट नूं पंजाबी च कहिंदे की आ ते ना ही उहनूं बघेल सिंह दा नां चेते आवे वी जट दा नां की आ। अखीर नूं बेचारे नूं तुरदे फिरदे नूं जमीन तों ऊंट दा इक लेडा लभ गया। उहनूं अपने हथ दी तली ते चक्की फिरे ते सामणों इक होर भइया तुरिया आवे, उहनूं कहिंदा भइया बात सुन, उनको कहना जिनके हैं हम खो गए हैं वो जिनका है ये।
2: वाह बिंद रखिया जी, मन गए थोड़े हौसले नूं, ना कुड़ी दा आता जानदे हो ना उहदा पता जानदे हो।
1: फिर भी अगले नूं अपनी अपनी लगदी है।

0: alarm. Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
2: Salam namaste. Salam namaste.
3: जिससे दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा
4: हुआ
5: हम शरीफ क्या हुए
6: मैं वापस
5: पूरी दुनिया ही बदमाश
6: देखो मैं हूँ कहाँ

0: अस्सलाम वालेकुम नमस्ते खुशामदीद वेलकम टू सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आपका होस्ट दोस्त यहां पे हाजिर है मेरे नंबर पे आई एम हियर टिल अलमगर बीर शाम और आप के नाम और टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे एज यू नो टुडे इज अ संडे इवनिंग गुड इवनिंग टू यू ऑल एंड यू आर लिसनिंग टू सनराइज रेडियो 100.6 एफएम 103.2 एफएम क्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर डीएबी प्लस ब्रैडफोर्ड कीथले इल्कले स्किप्टन लीज हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकशायर ब्लैकबर्न Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Minton Keynes में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है एंड टुडे इज अमेजिंग डे एज यू नो टुडे इज अ संडे इवनिंग 19th of July 2026 और वेदर इज अ ब्यूटिफुल इट्स नो डाउट इज वेल इट्स नॉट अ डाउट व्हाट अ अमेजिंग मौसम बड़ा ही प्यारा बड़ा ही खूबसूरत मौसम है कहाँ पे जा रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं व्हाट इज योर ब्यूटिफुल प्लान फॉर ब्यूटिफुल इवनिंग एंड इफ यू वांट टू गिव मी अ कॉल 01274306 06 पे लाइनें काफ़ी जगमग जगमग कर रही हैं और अपनी अपनी हाजिरी लगाने के लिए नंबर वही है 01274306 06 पे और यहाँ पे हमने पेश करना है हिट ऑफ द आवर आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल वंडरफुल ट्यून है और आपने मायने नहीं करने के लाइने काफ़ी जमा हो चुकी हैं लाइने फ्लश हो रही हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी आप अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: Sunrise Radio, hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: राइट दैट वाज द हिट ऑफ द आवर और आपने जो कि बहुत बहुत शुक्रिया साफ दोस्तों जो फ्लशिंग हो रही है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अपनी अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच आप साफ दोस्तों का प्यार है मोहब्बत चाल खलूस है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और सबका मैं नाम लूंगा थोड़ी देर के बाद और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: Well, our time in the studio is 8:15 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep it locked on with the Parviz Khan. Or line yahan pe chamak rahi hai, damak rahi hai. Aur yahan pe maine choti si break karni hai. Break ke foran baad, I will mention your names. Aur bahut bahut shukriya aap sabka. Aur Leeds waleo, kya haal chaal hai? Theek hai, sahi theek hai aapki. MashaAllah, kya kehne ji? Aur bahut acha laga aapse baat karke, guftgu hui hai, bada acha laga. Bahut bahut shukriya aapka bhi. Aur bada hi acha laga kyunki hamare बड़े ही सुपरस्टार हमारे आए हुए हैं पाकिस्तान से माशाल्लाह मोहम्मद यूसुफ और क्रिकेटर है और क्या कहने जी उनको भी हम वेलकम कहते हैं जी कहते हैं खुश आमदीद कहते हैं और उनका भी हमें शुक्रगुजार ममनून उनका उनके साथ मुलाकात हुई है बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत और वो भी हैं हमारे और हमारे एक और सुपरस्टार हैं पाकिस्तान से आए हुए हैं और दो तीन लोग आए हुए हैं नईम अजवारी साहब भी आए हुए हैं नईम साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और एक और हैं उनका भी शुक्रगुजार ममनून उनका भी एनीवे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे ब्रेक के फौरन बाद गीत होगा आप सब दोस्तों के लिए होगा जो भी मेरा साथ दे रहे बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कीप इट लॉक्ड सनराइज
2: म्यूजिक
3: apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
4: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
0: Sunrise Radio. Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio 103.2 FM. बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का और जिन दोस्तों मुझे फोन कर चुके हैं कर रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका भी सबसे पहले कॉल आज आई है हमारे राजेश शुएब भाई बहुत शुक्रिया आपका वेलकम जी एन खुश आमदीद आपके लिए भी बहुत शुक्रिया हम मिशन दुआएं करते हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका भी अब्दुल क्यूम साहब फराजिंग से आपने भी सलाम दुआ की है मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे चौधरी फरियाज साहब हैं आपने भी सलाम पेश किया है बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ देने सारा जी हैं बहुत शुक्रिया आपका भी अतिका साहिबा है मैनचेस्टर से बहुत शुक्रिया आपका भी सिमी जी हैं बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर साहब हैं बहुत शुक्रिया आपके भी अली भाई हैं बहुत शुक्रिया आपका भी और रेखा जी हैं बहुत शुक्रिया आपके भी और नशीन साहिबा बहुत शुक्रिया आपका भी आप हमारा साथ देते थैंक यू वेरी मच और आपकी सखी सहेलियाँ हैं बहुत शुक्रिया शाहपरी जी हैं बहुत शुक्रिया आपका भी और लेखा जी हैं बहुत शुक्रिया आपका भी आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा और सबसे पहले जो कॉल आई हैं हमारे शुएब भाई आपके लिए गए वाजिद भाई बहुत शुक्रिया आपका भी और आपको हम विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल बहुत शुक्रिया मेरे भाई आप मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से आपको विश नहीं हैप्पी बर्थडे और सब सुनने वालों की तरफ से भी होगा और बहुत शुक्रिया आपका भी और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे बहुत खूबसूरत गीत है और नायाब गीत है ये आपके लिए होगा एंजॉय द ट्रैक

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। और यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद आई विल प्ले फॉर कॉफी। लाइनें मिस हो चुकी हैं और आप जब मुझे दोबारा फोन करेंगे आई विल मेंशन योर नेम एज वेल। बहुत शुक्रिया, काफ़ी लाइनें ड्रॉप हुई हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और जवाब करने का दुआओं का बहुत चौधरी फरियाद साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, शायद बहादुर के आपने भी हमें याद किया पाकिस्तान से, आपने सब सुनने वाले को सलाम पेश किया, तो मैं कहूँ वालेकुम सलाम। और आने वाला गीत आपके लिए भी होगा थोड़ी देर के बाद, और आपकी जो सखी सहेली हैं उनके लिए भी गीत होगा। और यहाँ पे हमने क्या करना है, छोटी सी ब्रेक करेंगे, निकी जी ब्रेक के फौरन बाद गीत होगा, खूबसूरत गीत होगा, और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप सब एंजॉय करेंगे। कीप इट लॉक्ड।
1: पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले, जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए, सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड, छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
0: राइट वेलकम बैक लिसनर रेडियो। और यहाँ पे हमने गाना पेश करना है चौधरी फरियाद साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे। और यही गीत मैं पेश करूँगा। सोनी जी बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे, थैंक यू वेरी मच। आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। सिमी जी हैं, ये गीत आपके लिए भी होगा और आपकी तरफ से आपकी जो सखी सहेली हैं उनके लिए भी होगा, और यही गीत मैं पेश करूँगा। अतिका साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारा साथ दिया, बहुत शुक्रिया आपका भी, ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप ही इंजॉय करेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है और बड़ा ही नायाब गीत है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून, और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा। और शुएब भाई बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमारा साथ दे रहे, और ड्राइव करें, ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, और ये गीत आपके लिए भी होगा, वंडरफुल ट्यून फॉर ऑल दोज वंडरफुल वंडरफुल कॉलर्स, और बहुत ही खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून, और ये वो गीत है आपके लिए गीत पेश करूंगा। ऑल द होमोश लिस्ट नो फॉरगेट ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिस्ट एफ रहमान साहब, ये गीत आपके लिए होगा, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमारा साथ दे रहे। नदीम मंसूर साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी हमारा साथ दे रहे, बहुत शुक्रिया, ये गीत आपके लिए भी होगा और आपके भी दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप ही इंजॉय करेंगे। और डॉक्टर मलिक साहब आपके लिए भी और आपकी पूरी टीम के लिए होगा, इंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून, एंजॉय।

Right, that was a wonderful tune और आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और इकराम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा और आपके जो दोस्त बाब हैं उनके लिए भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दुआ करने का, हौसला अफजाई करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गीत आपके लिए भी होगा। रौनक नवीद साहब हैं हमारा प्रोग्राम सुने आश्विजन में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये गीत आपके लिए भी होगा और आपके जो दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इन्जॉय करेंगे। आपने सब दोस्तों को सलाम पेश किया है तो मैं कह रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और अब्दुल कय्यूम साहब फ्राइजिंग हॉल में है, ये गीत आपके लिए होगा और मुझे उम्मीद है यकीन कि आप भी इंजॉय करेंगे। और एफ रहमान साहब ये गीत आपके लिए भी होगा, आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये गीत आपके लिए भी पेश करूंगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। वाजिब भाई हैं आपके लिए भी होगा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कॉल एज़ वेल, बहुत अच्छा लगा। और वेलकम जी एन खुश आमदीद आपके लिए भी और नेक तमन्ना आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: Well, right, and that was a track of four played for everybody out there that enjoyed it. Baba shukriya aapka bhi. And moving on to another beautiful track. Aur aaj kahan pe ja rahe hain, kahan pe aa rahe hain? What is your beautiful plan for this beautiful evening? Oh, what an amazing weather, believe it or not. Such a lovely, dovey, romantic mausam hai. Aur bahut acha lag raha hai. Anyway, moving on to another beautiful track. Aur sunne ji, ye geet aapke liye bhi hoga. Aur yehi geet main pesh karunga. Ruby ji, baba shukriya aapka bhi. Thank you very much for your call as well. Geeta ji, baba shukriya aapka bhi. Aur ye geet आपके लिए, मुझे उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे. और यही गीत मैं पेश करूंगा. रेखा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. मिस्टर मिखिल पटेल, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें बर्मिंघम से याद किया है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच फोन करने का, उजरा अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया. और चौधरी फ्रियाज साहब, ये गीत आपके लिए गा और आपके दोस्तों के नाम होगा. मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप इस गीत को एंजॉय करें. बड़ा ही नायाब गीत है, बड़ा ही प्यारा गीत है और आजकल वैसे भी छाया हुआ है. और ये मैंने पहले पेश किया था और हमेशा मैं पेश करता हूं अपने प्रोग्राम में. और बहुत ही खूबसूरत गीत है और सब सुनने वालों के लिए होगा. और ये गीत थोड़ी देर के बाद में पेश करूँगा क्योंकि अभी टाइम होने वाला है. क्योंकि अब आपको पता है कि आर्ट ब्रेक होगी, छोटी सी आर्ट ब्रेक होगी, उसमें फ्लश बैक में हमने गीत पेश करना है. और यहां पर हमने करना है, टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज़ वेल. बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफ़ी साहब है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप हमारा साथ दे रहे, थैंक यू वेरी मच. दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी आपने दुआएं की है और हमेशा ही आपने मेरे लिए दुआएं करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. और जो पिछला प्रोग्राम हुआ है वेंसडे के रोज़, आपने उजरा अफजाई किए, दुआएं की हैं और सब सुनने वालों ने पसंद भी किया, इंजॉय भी किया, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर राय अजहर हुसैन साहब हैं, हमारे मोहतरम हैं, दिल अजीज़ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. साजिद भाई फ्राम ऑल द वे फ्राम शेफील्ड से, और साजिद पलवान साहब हैं मैनचेस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और आपने भी हमारा साथ दे रहे, थैंक यू वेरी मच. अब्दुल क्यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. फ्राइजिंग ऑल से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और एक और हमारे मोहतरम हैं, भाई हैं, अब्दुल क्यू साहब हैं, वो नेल्सन में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. लंकशायर में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं. डैनिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू फॉर योर लवली लवली कॉल एज वेल. हमें अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने भी टाइम मुझे दिया, जो कीमती वक्त आप मुझे दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, थैंक यू वेरी मच. और ये यहाँ पे हमने क्या करना है कि टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेल. और हमारे कम्यूटी जी हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मस्ती कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों मस्ती कर रहे हैं मेरे भाई, क्या वजह है मेरे भाई. खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, क्या नहीं किया आपने, ये मुझे पहले बताया. आप क्यों सो गए हैं और सोने का ये टाइम नहीं है, जाग जाए, ठीक है ना. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और हमारे कम्यूटी जी सो गए हैं और ये इनको मैं जगा रहा हूँ और अल्लाह करे कि जाग जाए. और क्या करें, क्या करें, क्या करें. एनी वे, कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to the clock, it's 43 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep a lockdown, keep a lockdown with the power of the gun. Here we have a break, okay, break a foreign bad flashback geet, okay, bada hi nayab geet, bada hi khubsurat geet, bada hi something different, something unique. Thoda ja hard ke geet hoga, mujhe bhi toh yakin ki aap enjoy karenge. Aur aapko bata hai na, I'm trying to play the track that you want to hear, something different, something unique. और वही हमारी कोशिश है, करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए थोड़ा नायाब गीत होने चाहिए जो आपने कभी सुने नहीं है या सुने होंगे और आप उनके भूल गए हैं. और ये हमने कोशिश कर रहा हूँ कि रिफ्रेश करने की, आपकी ये जो यादगारी है ना, उसको हमने फ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रेश कर लूँ. और ये जो है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू ड्राइव इन, ड्राइव विद द कैर, एंड इफ यू आउट अबाउट एंड स्टिक अराउंड विद द सुंदर रेडियो, इफ यू इन द पार्क, make sure you are tuning with the Sunday radio. Aur bahut bahut shukriya aapka bhi. Aur make sure you keep the park clean and tidy after you finish, theek hai na. Ye apne zaruri hai, ye hamare liye bhi zaruri hai, aapke liye zaruri hai. Sab sunne wale ko main request karta hu, please, if you are going in the park, make sure you leave the park in tidy. Make sure don't put the rubbish on the, you know, on the road, on the street, back alleyway. Or if you are driving, and please do not, you know, open the window down, wind the window down, and chuck the food outside. It's not nice, it's not unique, it's not something, you know, it's not us, believe it or not. And ऐसे करना भी नहीं चाहिए और ऐसे होना भी चाहिए. और जो आपकी अपनी जो अपना जो स्ट्रीट है, जो आपके जो मल्लेदार हैं और जो भी हैं, उनकी खिदमतदारी करें, लुक आफ्टर करें. और कीप योर टाइडी, योर सिटी, योर टाउन, योर स्ट्रीट, एवरीथिंग यूनिक एंड खूबसूरत होनी चाहिए. और वैसे भी गर्मी का मौसम है और इस मौसम में अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें. कीप इट लॉक्ड.
2: तेरी गलियां गलियां
3: गलियां गलियां कुमी,
2: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
1: लुकिंग फॉर अ क्वालिटी होम टू रेंट
4: व्हेदर यू नीड अ 1, 2 or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
5: Music. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Right, that was a wonderful tune, one of my favorite tune, और आपने enjoy किया और हमारा जो पैसा वसूल हो गया बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच इकराम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच, आपने दोबारा फ़ोन किया, उजरा अफजाई किया, दुआएं दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर. और बहुत अच्छा लगा वाजिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. और ये गीत मैं पेश करूँगा, मुझे उम्मीद यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे. और वंडरफुल ट्यून फॉर ऑल दोज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कॉलर्स. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और फजाना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, उजरा अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया. ये गीत आपके लिए भी होगा. और सारा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ये गीत आपके लिए भी होगा. आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून एज वेल. बहुत खूबसूरत गीत है, नायाब गीत है. और ये गीत मैं पेश करूँगा चौधरी फयाज साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए होगा. मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए और बाहर आ गए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और आपके दोस्तों के नाम लूँगा और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें याद करें. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और आपके सब दोस्तों के नाम होगा. मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इंजॉय करें. ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. राय अजहर हुसैन साहब हैं, ये गीत आपके लिए भी होगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अतीका साहिबा हैं, सिमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. ये गीत आपके लिए भी होगा. आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल वंडरफुल ट्यून. और ये गीत मैं पेश करूँगा. हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप बर्मिंघम में हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है और आप वहाँ पर आज कोई पार्टी हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप वहाँ पे गए. और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें याद किया है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच कि आपने भी हमें याद किया है. और ये गीत मैं पेश करूँगा.

हमारे मोहतरम भाई हैं चौधरी आसिफ रियाज साहब हैं, ये गीत आपके लिए गया। आई होप यू कैन एंजॉय दिस वंडरफुल वंडरफुल ट्यून, बड़ा ही खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माय फेवरेट ट्यून, और इसको आपने एंजॉय करेंगे। बहुत ही नायाब गीत है, बहुत खूबसूरत गीत है, और आई होप यू कैन डेफिनेटली गोना एंजॉय द ट्रैक एज़ वेल। एंड इफ यू आर गेटिंग मैरिड टुडे, दिस ट्रैक इज गोना गो आउट टू यू एंड योर फैमिली, योर फ्रेंड, योर कॉलीग्स, नेबर्स, एवरीबॉडी लॉक्ड इन द स्टेशन, ऑल द होमवर्क लिसनर्स, नॉट फॉरगेट ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स एज़ वेल, और जो मेरे साथी हैं उनके लिए गीत होगा। एंजॉय द ट्रैक।

Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio 100.6 FM, 103.2 FM across the West Yorkshire, DAB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Minton, Keene. Very, very soon it's going to launch in on Derby, Midland. And you can also download the Sunrise Apple Play Store or Google Play Store. And not forgetting www.sunriseradio.fm, www.sunrise.radio. That is all about, and there's so many ways to get connected with the Sunday Radio. And as long as you got the internet facility, you can catch me anywhere in the world, even in the jungle of Africa. Aise hota hai. और योर नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला होगा अब से लेके 11 o'clock तक. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके जो मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आई नो लॉट ऑफ यू माशाल्लाह हमारा साथ दे रहे हैं, कोशिश करने के फ़ोन करने की. एंड आई डू अपोलोजाइज टू बी फॉर लिसनर्स जिनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके भी. आप दोबारा फ़ोन करेंगे, आई विल टेक यू ऑन एयर एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और काफ़ी दोस्तों की लाइन ड्रॉप हुई है और आई डू अपोलोजाइज टू ऑल दोज ब्यूटीफुल कॉलर्स. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जब भी आपको मौका मिले आप इन दोबारा में फोन करेंगे, आई विल टेक यू ऑन एयर. और यहां पे लाइव कॉल का सिलसिला होगा.

0: राइट लेडीज जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, और यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला है, और हमारा साथ देने अतीका साहिबा हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर, हमारा साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया कि आपने इंतज़ार किया, वेट किया, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपके लिए जी, और सुनाए कैसी तबीयत आपकी?
1: जी बहुत शुक्र है अल्लाह का,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: इस खूबसूरत मौसम में और सेहत भी खूबसूरत,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह,
0: माशाल्लाह।
1: तो उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे ही होंगे,
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
1: सेहतमंद होंगे, और
0: माशाल्लाह
1: तो अल्लाह पाक सबको सेहत नसीब फरमाए,
0: आमीन आमीन।
1: तो बहुत दुआएं हैं सबके लिए,
0: माशाल्लाह।
1: और इस रंगे महफिल के जितने भी सितारे और चांद और सितारे हैं सबके लिए बहुत दुआएं हैं,
0: माशाल्लाह।
1: तो अल्लाह पाक सबके लिए अच्छा रखे और इस महफिल में सब हिस्सा ले,
0: माशाल्लाह,
1: और इस मौसम को और भी खूबसूरत बनाए
0: जी।
1: तो लगता है कि सब आज इस संडे की शाम खूबसूरत होगी, हमेशा
0: माशाल्लाह जी जी,
1: और माशाल्लाह हमेशा ही खूबसूरत होती है, और आज भी बहुत खूबसूरत जो सॉन्ग लगे वो भी बहुत ही खूबसूरत इस मौसम की तरह थे
0: जी।
1: और ये सब आपका कमाल है, ये कमाल गुम हो गया था तो मैंने आज फिर इसको आज,
0: वाह जी वाह, कमाल कमाल ही हो गया जी, क्या कहने, कमाल हो गया, क्या कहने,
1: बहुत कमाल के गाने थे, बहुत कमाल का आपने आगाज किया, इंशाल्लाह इसका जो अंजाम एंड तक वो भी खूबसूरत होगा बहुत। तो क्योंकि सब लोग इतने खूबसूरत तरीके से सब हिस्सा लेते हैं, और अपनी अपनी जो उनकी नज़में हैं या जो गजलें हैं या गाने हैं सब शायरी करते हैं, बहुत खूबसूरत होती है,
0: माशाल्लाह।
1: तो इसलिए हम भी हिस्सा लेते हैं, इसलिए ये इस रंगे महफिल में आने के लिए सोचते रहते हैं किस दिन ये रंगे महफिल सजेगी। तो आज भी ऐसा ही है कि ये इस महफिल में हिस्सा लेंगे और खूबसूरत शायरी अपनी तरह से तो खूबसूरत ही सुनाएंगे,
0: जी जी
1: माशाल्लाह। तो सबको सलाम करते हैं, हमारी सखी सहेलियां हैं, सुमित्रा जी हैं, गिदर भाई हैं, काफी देर से उनकी आवाज नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि वो आएंगे।
0: वो आजकल वो बिजी बिजी लगे हुए हैं, बिजी बिजी आपको पता है ना, वो काफी बिजी हो चुके हैं, और वो उनको शौक है, उनको शौक पूरी करने तो वो आ जाएंगे इंशाल्लाह जी।
1: लेकिन हम उनको मिस कर रहे हैं, वो अपनी आवाज सुनाए और थोड़ा सा टाइम निकालें, अपना वो जो शौक है उस शौक में से इस शौक को भी पूरा करें
0: जी।
1: तो बहुत मिस कर रहे हैं हम उनको
0: जी,
1: दो तीन वीक हो गए हैं
0: जी जी।
1: तो इंशाल्लाह वो आएंगे। तो रेखा जी हैं, सलीना जी हैं, सितारा जी हैं, सितारा जी की भी बहुत देर हो गई
0: है,
1: उम्मीद है वो भी आज हिस्सा लेंगी
0: जी।
1: तो आसिया जी हैं, रुखसाना अफजल हैं, चौधरी फरियाज साहब आएंगे,
0: वो तो हमारा साथ दे रहे हैं माशाल्लाह, वो तो खूबसूरत रंग लेके आए हैं, और माशाल्लाह खूबसूरत होगा। राना नवीद साहब आएंगे, रफी साहब आएंगे, मंच साहब आएंगे, किस किस का मैं नाम लूँ, यहाँ पे मैं एक से बढ़कर एक कॉलर है जी।
1: लास्ट टाइम भी वो सब आए थे, जैसे चौधरी फरियाज साहब दो दफा आए थे, बहुत खूबसूरत शायरी थी उनकी हमेशा की तरह
0: जी।
1: और वो राना नवीद साहब की बहुत
0: शायरी
1: थी,
0: बहुत खूबसूरत,
1: वो उम्मीद है कि वो अपनी आवाज सुनाएंगे
0: जी।
1: और नदीम मंसूर साहब आएंगे इंशाल्लाह, तो वो भी खूबसूरत शायरी पेश करते हैं, सॉन्ग पेश करते हैं, तो उनका भी वेट है। जवेद मीर साहब हैं, पापा जी हैं, शकील जी हैं, शकील जी की शायरी बहुत अच्छी होती है हमेशा, और आज भी उनकी आवाज़ सुनेंगे इंशाल्लाह। तो सलीम भाई हैं जिनको आप रफी जी कहते हैं, खूबसूरत सॉन्ग सुनाते हैं। अब्दुल कयूम साहब हैं, उनकी क्या तारीफ करें,
0: वो क्या कहने, क्या कहने,
1: बहुत खूबसूरत शायरी उनकी भी होती है। मुदस्सर कियानी साहब हैं, वो भी आएंगे, साजिद पहलवान साहब हैं, वाजिद भाई हैं, सज्जाद साहब हैं, फेरमान साहब हैं, और महबूब इलाही साहब हैं, वो भी जरूर आएंगे इंशाल्लाह। तारिक भट्ट साहब हैं, और राना नवीद साहब हैं, चौधरी रुखसार साहब,
0: चौधरी रुखसार साहब हम इंतजार में हैं, वो आएंगे इंशाल्लाह, और हमारा प्रोग्राम सुनने जी, उनको वेलकम कहते हैं जी, कहते हैं जी,
1: वो जरूर आएंगे इंशाल्लाह
0: जी जी।
1: राव अजहर हुसैन साहब है, उनका बहुत इंतजार है, वो भी अपनी आवाज,
0: और हमारा साथ दे रहे हमारे मोहम्मद रफी साहब हैं, वो भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, वो तो आपके बाद आएंगे जी।
1: वो भी बहुत खूबसूरत सॉन्ग सुनाते हैं
0: जी।
1: आसिफ रियासत साहब हैं
0: जी।
1: तो सबको बहुत बहुत सलाम,
0: इंशाल्लाह
1: वो सब आएंगे
0: जी।
1: और अपनी आवाज भी सुनाएंगे। तो शायरी है कुछ सबके नाम
0: जी जी जी, गो अहेड।
1: नजर को आईना, दिल को तेरा शाना बना देंगे।
0: वाह जी वाह।
1: तुझे हम क्या सिखाया, जुल्फ जाना बना देंगे।
0: वाह जी वाह, बहुत खूब।
1: हमें अच्छा है बन जाए सरापा सरगर्दश्त अपनी, नहीं तो लोग जो चाहेंगे अफसाना बना देंगे। उम्मीद ऐसी न थी महफिल के अरबाब बसीरत से। उम्मीद ऐसी न थी महफिल के अरबाब बसीरत से। गुना शम्मा को भी जुर्म परवाना बना देंगे। गुना शम्मा को भी जुर्म परवाना बना देंगे। हमें तो फिक्र दिल साजी की है, दिल है तो दुनिया है। हमें तो फिक्र दिल साजी की है, दिल है तो दुनिया है। सनम पहले बना देंगे फिर सनम खाना बना देंगे।
0: बहुत खूब।
1: ना इतना छेड़ छेड़ कर है वक्त दीवाना बना हमको। ना इतना छेड़ कर है वक्त दीवाना बना हमको। हुए दीवाने हम तो सबको दीवाना बना देंगे। हुए दीवाने हम तो सबको दीवाना बना देंगे। न जाने कितने लोग बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से। न जाने कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से। वो थोड़े आईना हम आईना खाना बना देंगे।
0: बहुत खूब।
1: नजर को आईना, दिल को तेरा शाना बना देंगे। तुझे हम क्या से क्या है, जुल्फ जाना बना देंगे। तो ये दो शेर है जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं।
0: जी जी।
1: यू भेंच के रखा है तेरी याद का सिक्का। यू भेंच के रखा है तेरी याद का सिक्का, अब खोलना चाहूं भी तो मुट्ठी नहीं खुलती।
0: वाह वाह, क्या कहने क्या कहने।
1: अब खोलना चाहूं भी तो मुट्ठी नहीं खुलती।
0: वाह।
1: बाहर तो निकल आऊं मैं जंदाने अलम से।
0: वाह।
1: बाहर तो निकल आऊं मैं जंदाने अलम से, कम वक्त मेरे सबर की रस्सी नहीं खुलती।
0: वाह वाह।
1: कम वक्त मेरे सबर की रस्सी नहीं खुलती। यू बेंच के रखा है तेरी याद का सिक्का,
0: क्या कहने।
1: खोलना चाहूं भी तो मुट्ठी नहीं खुलती।
0: क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। वाह जी वाह वाह, कमाल कर दिए, बहुत ही खूबसूरत जी।
1: कहते शाहों की तरह थे ना अमीरों की तरह थे, हम शहर मोहब्बत में फकीरों की तरह थे।
0: वाह।
1: शाहों की तरह थे ना अमीरों की तरह थे, हम शहर मोहब्बत में फकीरों की तरह थे।
0: वाह।
1: दरियाओं में होते थे जजीरों की तरह हम, सहराओं में पानी के जखीरों की तरह थे।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: अफसोस के समझा ना हमें अहले नजर ने। अफसोस के समझा ना हमें अहले नजर ने, हम वक्त की जंबील में हीरों की तरह थे।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: हम वक्त की जंबील में हीरों की तरह थे, गमे तो गलू पाऊं में जंजीर अना की।
0: वाह।
1: आजाद भी थे हम तो असीरों की तरह थे। आजाद भी थे हम तो असीरों की तरह थे, अब रह गए हम सिर्फ रवायात की सूरत।
0: वाह।
1: अब रह गए हम सिर्फ रवायात की सूरत।
0: वाह।
1: जब थे हम रंग नजीरों की तरह थे।
0: वाह बहुत खूब।
1: हैरत है कि वो लोग भी अब छोड़ चले हैं। हैरत है कि वो लोग भी अब छोड़ चले हैं, जो मेरी हथेली में लकीरों की तरह थे।
0: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
1: मेरी हथेली में लकीरों की तरह थे।
0: वाह।
1: सोची ना बुरी सोच कभी उनके लिए भी। सोची ना बुरी सोच कभी उनके लिए भी, पैवस्त मेरे दिल में जो तीरों की तरह थे।
0: बहुत खूब।
1: शाहों की तरह थे ना अमीरों की तरह थे, हम शहर मोहब्बत में फकीरों की तरह थे।
0: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
1: या रब गमे हिजरा में इतना तो किया होता, जो हाथ जिगर पर है वो दस्ते दुआ होता।
0: वाह वाह वाह।
1: एक इश्क का गम आफत, इस पे दिल ये दिल आफत।
0: वाह।
1: एक इश्क का गम आफत और इस पे ये दिल आफत।
0: वाह।
1: या दिल ना दिया होता या गम ना दिया
0: या होता। वाह क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
1: गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने।
0: वाह।
1: कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता।
0: वाह जी वाह।
1: अमीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती।
0: वाह।
1: वादा वफा ना करते वादा तो किया
0: होता। वाह क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब।
1: वादा वफा ना करते वादा तो किया होता,
0: वाह।
1: नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, यूँ होता तो क्या होता, यूँ होता तो क्या होता,
0: वाह वाह।
1: या रब गमे हिजरा में इतना तो किया होता,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: जो हाथ जिगर पे है वो दस्ते दुआ होता,
0: कमाल कर,
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। इतने खूबसूरत अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में बहुत बहुत शुक्रिया आप आई, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक्त दिया और बहुत खूबसूरत शायरी की, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया। और गिदिन भाई भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, और हमारे भाभी जान भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सलाम पेश करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। That was Tikka Sahib, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जिनकी मैं तारीफ करूँ कम है, मोहम्मद रफी साहब हमारा साथ दे रहे हैं यहाँ पे। वेलकम जी, आने खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने मुझे कीमती वक्त दे रहे, मुझे पता है आप काफी बिजी हैं और फिर भी आप आए हैं मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए दोबारा।
2: हमारा फर्ज बनता है।
0: हाय हाय हाय सदके जावा करवान जावा जी जी माशाल्लाह। क्या
2: आप ठीक ठाक?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, आप आ गए और हमें क्या चाहिए मेरे भाई।
2: बड़ी मेहरबानी सर। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दरूद ओ सलाम। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, सभी से जुदा जिसका अंदाज है, फलक था जमीन जिसकी परवाज है, वही जिन पे हमको नाज है। परवेज खान जी, आप ही की तो वो आवाज।
0: हाय हाय हाय हाय सदके जावा कुर्बान जावा। वाह जी वाह, कमाल कर दिया, कमाल जी।
2: आपको तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, और आपके लिए दुआएं हैं, और वाजिद भाई आपको सलाम पेश करें, अली भाई हमारे, और
2: वालेकुम अस्सलाम
0: शुब्रेज भाई हैं, वो आपको सलाम पेश करें जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बड़ी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम, और ये फरमाइश करने वाले हैं आप परवेज खान, मुबीन साहिल, डॉक्टर सागर
0: जी,
2: डॉक्टर बशीर पाशा, डॉक्टर हिम्मत कुमार, नर्स फरजाना जावेद, गुरु भाई बाबी सेबा, सिमी बहन
0: जी।
2: उसन वाले तेरा जवाब नहीं, उसन वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, उसन वाले तेरा जवाब नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
2: तू है ऐसी कली जो गुलशन में साथ अपने

में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, तेरी आँखों में ऐसी मस्ती है जैसे छल के

ने तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली गटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम्ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम्ही तुम हो, कब से यही कहते हैं आंखों में तुम्ही तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम्ही तुम हो। आ गए प्यार के दिन बेखुदी छाने लगी मस्तियां जू

0: नगमों की तानों में तुमी तुम हो, कब से यही कहते हैं आंखों में तुमी तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुमी तुम हो। दीप खुशियों के सदा दिल में जलते ही रहे, प्यार की राहों पे हम यूं ही चलते ही रहे, यूं ही चलते ही रहे।
1: Beautiful.
0: क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुमी तुम हो, क्यों न मिले मंजिल जब राहों में तुमी तुम हो, कब से यही कहते हैं सांसों में तुमी तुम हो, जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुमी तुम हो।
1: बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, आप आए बिहार आगे।
0: थैंक यू
1: वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, ये आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और क्या टाइमिंग इन्होंने पाई है, बहुत खूबसूरत टाइमिंग, बहुत ही ज़बरदस्त, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और क्योंकि मैंने यहाँ पे अजान पेश करनी है, और वो भी मगरब की अजान होगी यहाँ पे ब्रैफर्ड में, यॉर्कशायर में, अपनी अपनी मकामी टाइम टेबल देख के सुन के अपनी नमाज अदा करेंगे। मेरे लिए मेरी फैमिली की दुआ करनी है। कीप ए लॉक्ड विद द सुंदर रेडियो 103.2 FM। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारी खुश नसीबी है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गिदिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और पबी सुमित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चौधरी फरियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और थैंक यू वेरी मच सिमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू वेरी मच, आप हमारा साथ दे रहे और बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ पे हमने क्या करना है कि आपको पता है कि आज ना बहुत ही खास दिन है, बहुत ही खूबसूरत दिन है, और सबके लिए और हमारे लिए भी बहुत ही खास दिन है, बिलीव करें। और खास दिन क्यों है आपको सबको पता है क्यों खास दिन है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। थैंक यू वेरी मच। एनी वे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाल के हमें फ़ोन करते हैं और अफजाई करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और दो तीन दफ़े लाइन ड्रॉप हो चुकी है और दोबारा वो आ गए हैं और छा गए हैं, क्या कहने मेरे भाई के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ भी हमने करना है, छोटी सी ब्रेक करेंगे, वो अजान की ब्रेक होगी और हमने खुद पेश करना है, क्योंकि पता नहीं क्या वजह कि यहाँ पे शो नहीं हो रही है, और कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमने अजान पेश करनी है ब्रैडफोर्ड यॉर्कशायर में।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Sunrise Radio, trendsetters in Asian broadcasting. We lead, others follow.
1: गलियां गलियां घूमी ते पैरां नी जुतियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नी मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
3: लुकिंग फॉर अ क्वालिटी होम टू रेंट
4: व्हेदर यू नीड one, two or three bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
3: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
5: The greatest Asian radio station in the world, Sunrise Radio.
0: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: राइट वेलकम बैक एंड लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। और यहाँ पे मैं जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है। और यहाँ पे हमारे लाडले आ गए हैं, और लाडलों के क्या कहने जी, और क्या कहने। और ये मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, और राना नवीर साहब हैं, जिन्होंने मेरे लिए टाइम निकाल के फ़ोन करें। माशाल्लाह उजरा अफजाई करते हैं, हमेशा उनके लिए उजरा अफजाई करते हैं। उनके चाहने वाले भी इतने हो गए माशाल्लाह, हमेशा ही वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए। और वो आ गए हैं हमारे मोहतरम राना नवीर साहब। वेलकम जी अनु, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: ओ मोहतरम, के हाल चाल है? ठीक ठाक से ठीक है आपकी?
1: मैं ठीक जी पाजी, मैं बिल्कुल ठीक। तुम ठीक हो?
0: मैं ठीक था। फर्स्ट टाइम आपकी आवाज सुन के ना, और मुझे एनर्जी आ रही है, मैं भी एनर्जेटिक हो गया हूं। मैं क्या कहने, क्या कहने,
1: तुम झटके ना लाए।
0: झटके ना लाए। क्या कहने, क्या कहने बाजी। और कैसी तबीयत आपकी?
1: बड़ा करम
0: करम करम करम। और क्या लेके हैं हमारे लिए?
1: लाया तो बहुत कुछ था, लेकिन आपने मुझे ना वो कर दिया है, मतलब स्टंट।
0: क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों मेरे भाई, आपके लिए पूरा प्रोग्राम आपके लिए हाजिर है, नाजिर है। और क्या कहेंगे आपके लिए, और सुनने वाले भी वो बैग हैं कि आप आएंगे।

0: छा गए क्या कहने जी।
1: मैं चाह पता कह रहा हूँ कि मैं जो सुनाऊंगा तो मैं वो खुद भी सुन सकूं और
0: सुनने वाले भी पसंद करें और मैं भी पसंद करूं, क्यों ना। हाँ। और हमारा साथ दे रहे हैं, सुनने वाले भी हमारा साथ दे रहे हैं, और आपके लिए हमारे शुएब भाई हैं, वो आपको सलाम पेश करते हैं और डॉक्टर मलिक साहब की पूरी टीम सलाम पेश करती है आपके लिए, और दोबारा ये आपके लिए जी। अरशाद
1: चले मैं कुछ नजर करता हूँ आपकी।
0: हाय हाय हाय हाय क्या कहने,
1: कहते के
0: वाह
1: तमाम शहर सितमगर
0: आहा
1: मेरी तलाश में है।
0: हाय हाय
1: हर एक हाथ का पत्थर मेरी
0: तलाश में है। हाय हाय हाय हाय क्या कहने, बहुत खूबसूरत वाह।
1: तमाम शहर सितमगर मेरी तलाश में है, हर एक हाथ का पत्थर मेरी तलाश
0: में है। हाय हाय हाय क्या कहने,
1: गुनाहे जिंदगी करके छुपा रहा हूं मैं।
0: वाह क्या कहने,
1: कजा अजल से बराबर मेरी तलाश में है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने, बहुत खूबसूरत नया।
1: गुनाहे जिंदगी करके
0: वाह
1: मैं छुपता फिरता हूँ।
0: परवेज भाई मैंने कहा था अगर मिस्सा ना उठाया तो मजा नहीं। हाय हाय हाय क्या कहने, मैं क्या करूं, मैं क्या कहेंगे आपके बारे में, क्या कहूं वाह।
1: गुनाहे जिंदगी करके
0: हाय हाय
1: छुटता फिरता हूं
0: वाह,
1: कजा अजल से
0: वाह वाह
1: मेरी तलाश में है।
0: हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने, बहुत खूब
1: और
0: वाह।
1: गमे हबीब खुदारा पनाह दे मुझको।
0: वाह वाह वाह क्या कहने, बहुत खूबसूरत।
1: गमे हबीब खुदारा पनाह दे मुझको।
0: वाह वाह
1: गमे हयात का लश्कर मेरी तलाश में।
0: ओए होए होए होए कमाल कर दिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाह हाय हाय हाय वाह।
1: और मैं भागता फिरा पीछे यूं ही मुकद्दर के।
0: हाय हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह वाह
1: खबर न थी कि मुकद्दर मेरी तलाश में है।
0: ओए होए बेमिसाल कमाल कर दिए, कमाल।
1: और जो जिंदगी के अलावों ने मुझको फूंक दिया
0: वाह।
1: खबर मिली कि समंदर मेरी तलाश में।
0: ओए होए इसको दोबारा करें, इस मिसरे को दोबारा करें। वाह वाह वाह वाह वाह बहुत खूब वाह।
1: जो जिंदगी के अलावों ने मुझे
0: हाय हाय
1: फूंक दिया
0: वाह क्या कहने,
1: खबर मिली के समंदर मेरी तलाश
0: में है। आए हाय हाय हाय हाय क्या कहने वाह वाह वाह वाह।
1: निजात आप तो समझे
0: वाह,
1: निजात
0: आप तो समझे,
1: आप तो मुझे दे
0: वाह।
1: निजात अब तो मुझे दे ऐ ज़ौक़े दर बदरी।
0: वाह हाय हाय हाय हाय हाय हाय
1: निजात अब तो मुझे दे ऐ ज़ौक़े दर बदरी।
0: वाह
1: कि मुद्दतों से मेरा घर मेरी तलाश में।
0: ओए होए होए होए होए होए कमाल कमाल कमाल कमाल।
1: मैं चाहता हूँ आप रुकें शेर पे।
0: हाय हाय
1: कि निजात अब तो मुझे दे ज़ौक़े दर बदरी।
0: वाह
1: कि मुद्दतों से मेरा घर मेरी तलाश में है।
0: ओए होए होए होए होए हमारे मोत्र में खालिद भाई ने वो आपका वाह वाह कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत वाह वाह क्या कहें।
1: शेर बहुत कीमती है,
0: बहुत ही कीमती।
1: निजात
0: जी
1: अब तो मुझे दे
0: वाह,
1: निजात अब तो मुझे
0: दे
1: ज़ौक़े दर बदरी।
0: वाह
1: के मुद्दतों से मेरा घर मेरी तलाश में है।
0: ओई होई होई होई होई होई होई कमाल कर दिए मेरे भाई, कमाल कमाल कर दिए
1: है ना,
0: ब्यूटीफुल वाह।
1: और नसीब नकीब हक का
0: वाह,
1: नकीब हक का हूं मैं।
0: वाह क्या कहने,
1: नकीब हक का हूं मैं।
0: वाह
1: ओ यार नजर भी साथ में दे रही है।
0: हाय हाय हाय हाय कोई कोई कोई बात नहीं, आराम से करें आराम से करें। आप इतना खूबसूरत शायरी और इतनी कमाल की बेमिसाल हो, वही कोई
1: मैंने इसलिए आपसे अर्ज की थी कि मुझे थोड़ी मोहलत दीजिएगा। मैं
0: आपके लिए मोहलत ही मोहलत मेरे भाई, आपके लिए पूरा पूरा प्रोग्राम आपके लिए मेरे भाई।
1: यकीन माने अच्छा पता क्या, जब हम लाइव होते हैं ना तो मेरे बहन भाई भी समझेंगे कि गुंजाइश देंगे मुझमें।
0: जी जी, कोई कोई कोई कोई बात, आप थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा माथा देख लें और नेक्स्ट आवर में मैं आपको लेके जाऊंगा, कोई मसला नहीं मेरे भाई। अभी
1: हमारी देखे, हम फैमिली हैं,
0: जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: कदरदान
0: आपकी कदर करते हैं और बिलीव करें जो सुनने वाले ना वो आपकी कदर करते हैं, वो इंतजार करते हैं।
1: मैं यकीन माने परवेज भाई, उम्मीद रखूंगा कि मेरी गफलत को माफ करेंगे कि मेरे पास ना अभी ना तो ऐनक है।
0: नहीं नहीं, कोई कोई कोई बात नहीं मेरे भाई, आप आराम से देखें ऐनक को, देखें और उसको ढूंढें और नेक्स्ट आवर में हम आराम से कर।
1: लेकिन लेकिन इस शेर में मैं अगर ना भी आ पाया ना जी, ये बड़ी कीमत, बहुत ही जिस तक पहुंच गया शेर, बड़ा कीमती है,
0: बड़ा ही कीमती है, इसमें कोई शक नहीं। अभी अभी न्यूज ब्रेक आने वाली, अभी पता क्या पता क्या होगा,
1: तो मुझे दे
0: वाह
1: निजात, अब तो मुझे दे ऐ ज़ौक के दर बदरी,
0: के
1: मुद्दतों से मेरा घर मेरी तलाश
0: में है। वाह वाह,
1: यही बड़ी कमाल है,
0: कमाल है, बेमिसाल है। और आदिल सुहेल अख्तर साहब वो शायर हैं, वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि आप इंतजार करें और नेक्स्ट आवर भी आए
1: अगर आप मुझे मौका देंगे।
0: क्यों सर, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मेरे भाई, आप थोड़ा होल्ड करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट आवर में स्टेट वे में लेके आऊंगा आपको, क्योंकि आप शर्मिंदा ना किया करें, ये प्रोग्राम ये मेरे भाई ये आपका प्रोग्राम है।
1: मुझे कोई घबराहट नहीं है जब तक परवेज भाई मौजूद है
0: ना। आए सदके सदके सदके सदके, यहाँ पे आप होल्ड करें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, होल्ड करें, बहुत बहुत शुक्रिया। वाओ, ये है मेरे भाई हैं मोहतरम हैं और दिल अजीज हैं, और यहाँ पे हमने न्यूज ब्रेक करनी, कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो।
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: Sky News Centre at 10. Incoming Prime Minister Andy Burnham will promise to restore confidence in government as he enters Downing Street tomorrow. The new Labour leader will say he's acutely conscious of being the sixth person to walk up to number 10 in just 10 years. But he says that underlines the need for a more stable and responsible politics. Speaking on Friday when he was elected leader, he told delegates he's ready.
4: Ready to lead and to build on the foundation laid by one person more than any other. Under Keir Starmer's leadership, we went from our worst defeat to one of the best victories in our history.
3: Meanwhile, Donald Trump's claiming that Andy Burnham will be opening up the North Sea for new oil and gas drilling. It's reported he could approve new licences. Southeast Water says they're currently on track to see water supplies in parts of West Kent return tonight. Up to 7,000 households in and around Tunbridge Wells have low pressure or no water at all. A 66-year-old man has been charged with murder after the death of a woman in Newport. Police, including firearms officers, were called to reports of an altercation early yesterday. It's turning into a tense World Cup final between Spain and Argentina. Live to Joe Rawson in New Jersey.
5: Spain 0, Argentina 0. Spain have carried the biggest threat in the baking New Jersey sun without really testing goalkeeper Emi Martinez. Lionel Messi has had very little impact. Still time for a goal because of the halftime show that saw Madonna, Ted Lasso, Shakira and BTS take to the pitch. Extra time to come if it stays like this, 0-0.
3: Elsewhere, England's cricketers claimed a 27-run victory at Lord's to win their one-day international series with India 2-1. And New Zealand's Ryan Fox won the Open Golf with his final shot of the tournament. He sunk a putt on the 18th green at Royal Birkdale. That's the latest. I'm Cam Hall.

0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio on 100.6 FM, on 103.2 FM, Cross West Yorkshire, DAB Plus, Bradford, Keighley, Ilkley, Skipton, Leeds, Halifax, Manchester, East Lancashire, Blackburn, Burley, Darwin, Nelson, Accrington, Milton Keynes, and not forgetting, very, very soon, it's going to be launching on Derby and Middlesbrough. And not forget, you can download the Sunrise app on Sunrise Radio, Apple Play Store and Google Play Store, or not forgetting www.sunriseradio.fm, www.sunrise.radio. That is all about, and you can catch me anywhere in the world, long as you got a facility for internet. You can catch me in jungle Africa, Australia, anywhere. Anyway, yahan pe mera saath de rahe aur bahut shukriya in sab ka bhi, aur yahan pe humne karna hai time check.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: The time in the studio is 6 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. We have your Keep It Locked On, Keep It Locked On with the Parviz Khan. And Bobby Shukriya, all of you friends. And here we are. And Rai Azhar Shahin, Bobby Shukriya. And the program ko pasand karne ka, enjoy karne ka, Bobby Shukriya. And hame acha laga aap hamara program sun rahe. And Bobby Shukriya, aap enjoy kar rahe. And enjoy kar rahe. Bobby Shukriya, aap kabhi Gidan bhai hain. And hamari Papi Jan Smitra ji hain. Bobby Shukriya, aap dono ka bhi shukriya karta hu. Aapne bhi hamara saath de rahe. Bobby Shukriya. और आपने दुआएं की हमारे लिए, प्रोग्राम को पसंद करें, और आपने सलाम पेश किया है हमारे मोहतरम को, हमारे राना नवीर साहब को सलाम पेश करें, और शकील साहब को आपने सलाम पेश किया, मैं कह रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ पे वेलकम करना है, जी करना है, खुश आमदीद है, सत बिस्मिल्लाह करेंगे, क्योंकि इतनी खूबसूरत शायरी करते हैं राना नवीर साहब, वेलकम जी एन खुश आमदीद। जी मेरे मोहतरम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इतने खूबसूरत शायरी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू
2: जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: अल्लाह का करम हुआ कि मैं सेटिंग में ना कुछ दोस्त जानते हैं कि
0: नहीं कि मेरे भाई आपका कमाल है, ये आपका कमाल है कि आपने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत शायरी करते हैं, और ड्यूरिंग द ब्रेक में माशाल्लाह काफी दोस्त ने मुझे फोन किया
2: जी, क्योंकि लाइव शो है, इसमें हम कोई ऐसे थोड़ी है कोई शाबाश लेने आए हैं,
0: नहीं,
2: यानी कोई जजमेंटल थोड़ी है, हम इस बात को ये नेचुरल बात है कि यार कभी हो जाता है कि
0: जी जी कोई बात नहीं मेरे भाई, गो हेड, आप क्या सुनाएंगे अभी, बहुत ही खूबसूरत। और
2: इजाजत
0: जी जी
2: इजाजत देने आए हैं वो इजहार तमन्ना की,
0: वाह जी वाह, क्या कहने, वाह,
2: इजाजत
0: देने आए हैं जी
2: वो इजहार
0: तमन्ना की,
2: जब अपने दिल को महरूम तमन्ना कर लिया
0: आए हाय हाय हाय, इसको दोबारा करे मुकर, वाह वाह वाह, क्या कहने
2: परवेज भाई,
0: जी जी
2: ये शेर पहुंचे जहां
0: मैं पहुंच गया,
2: इजाजत देने आए हैं वो इजहारे तमन्ना की,
0: वाह,
2: जब अपने दिल को महरूमे तमन्ना कर लिया
0: आए,
2: और मैं बड़ी मदद चाहता हूँ कि लास्ट आवर में मैं वो बात वैसे नहीं पूछा पाया, क्योंकि
0: जी
2: शेर की ना सर एक कदर होती है,
0: कदर होती है ना, कदर जो ना वो शेर शायरी की कदर करनी चाहिए, और जो जिन्होंने लिखा है उनकी भी कदर चाहिए करनी चाहिए, जिन्होंने कर रहे हैं वो भी उनकी कदर करनी चाहिए, और सुनने वाले देखो आपको पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं जी,
2: जरा नवाजी है, मतलब आप इस काबिल समझते हैं, तो मैं वो अब दोबारा आपकी नजर करना चाहता हूँ दोबारा से, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया ठीक,
0: कोई बात नहीं।
2: तमाम शहर सितमगर मेरी तलाश में है,
0: हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह,
2: हर एक हाथ का पत्थर मेरी
0: तलाश में है, हाय हाय,
2: गुनाह जिंदगी करके मैं छुपता फिरता हूँ,
0: वाह,
2: कजा अजल से बराबर मेरी तलाश में है,
0: हाय हाय हाय हाय हाय, कमाल का
2: एक एक मिसरा कीमती,
0: एक एक मिसरा जो ना कीमती है, वाकई कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, वाह क्या कहें,
2: गमे हबीब खुदारा पनाह दे मुझको,
0: वाह वाह वाह वाह,
2: गमे हबीब खुदारा पनाह दे मुझको,
0: वाह,
2: गमे हयात का लश्कर मेरी तलाश में,
0: ओए होए होए होए होए होए, क्या कहने, वाह वाह वाह वाह,
2: मैं भागता फिरा पीछे यूं ही मुकद्दर के,
0: वाह,
2: खबर ना थी कि मुकद्दर मेरी तलाश में
0: आए, इसको दोबारा मकरन, वाह वाह वाह वाह,
2: मैं भागता, मैं सब सामीन की, मैं किसी का फर्ज़ नाम ले,
0: नहीं नहीं कोई कोई कोई बात नहीं, गो है जी जी, वाह वाह वाह,
2: मैं भागता फिरा पीछे यूं ही मुकद्दर के,
0: वाह,
2: खबर ना थी कि मुकद्दर मेरी तलाश
0: में है, आए हाय हाय, वाह वाह वाह वाह,
2: और जो तिशनगी के अलाव ने मुझको फूंक दिया,
0: वाह हाय वाह,
2: जो तिशनगी के अलाव ने मुझको फूंक दिया, खबर मिली कि समंदर मेरी
0: तलाश में है, वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह बहुत खूब,
2: सुनिएगा इसका मैं मजा लेता हूँ कि निजात अब तो मुझे दे ऐ ज़ौके दरबदरी,
0: वाह वाह,
2: निजात अब तो मुझे दे ऐ ज़ौके दरबदरी,
0: वाह,
2: के मुद्दतों से मेरा घर मेरी तलाश में है।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने मेरे भाई, बहुत ही आला और बहुत खूबसूरत।
2: और नकीब हक का हूँ मैं,
0: वाह,
2: नकीब हक का हूँ मैं, असरे नौ के कूफे में, असरे नौ के कूफे में,
0: वाह,
2: यजीद वक्त का खंजर मेरी
0: तलाश में है। आए ओए होए होए होए, कहां कहां ले गए मेरी,
2: आ हा हा हा, ये यजीद वक्त का खंजर
0: मेरी तलाश में है, वाह,
2: और मैं अपने आप से निकला हूं नाज जिस दिल से।
0: हाय हाय हाय, वाह वाह,
2: मैं अपने आप से निकला हूं नाज जिस दिन से, मेरा उदास था पैकर मेरी तलाश
0: में है। वाह वाह वाह, क्या कहने मेरे भाई, वाह, सलूट मेरे भाई, सलूट।
2: और बहुत अरसा गुनाहगारों में पैगंबर नहीं रहते।
0: हाय हाय हाय हाय हाय,
2: किसंगो खश की बस्ती में शीशा घर नहीं
0: रहते। हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह,
2: और अधूरी हर कहानी है यहाँ जोके तमाशा की, कभी नजरें नहीं
0: कभी
2: रहती, कभी मंजर नहीं।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने।
2: और बहुत महंगी पड़ेगी पासबानी तुमको गैरत की, आपकी नजर शेर है,
0: जी जी जी जी,
2: बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी पासबानी तुमको गैरत की, कि जो दस्तारे बचा लेते हैं उनके साथ नहीं रहते।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
2: जो दस्तारे बचा लेते हैं उनके सर नहीं रहते। मुझे नादम किया कल रात दरवाजे ने ये
0: कहकर,
2: मुझे नादम किया कल रात दरवाजे ने ये कहकर, शरीफ इंसान घर से बाहर देर तक नहीं रहते।
0: क्या कहने क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, वाह,
2: शरीफ इंसान घर से देर तक बाहर नहीं रहते, और खुद आगाही की मंजिल उम्र भर उनको नहीं मिलते। उम्र भर उनको
0: नहीं मिलते,
2: जो जो जो कूचा गर्द अपनी जात के अंदर नहीं रहते।
0: आए हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने।
2: और पटख पटख देता है साहिल हर समंदर,
0: हाय हाय,
2: पटख देता है हर समंदर मुर्दा जिस्मों को।
0: हाय हाय हाय हाय,
2: ज्यादा देर तक अंदर के खोट अंदर नहीं
0: रहते। हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
2: और बजा है जोम सूरज को भी नाज अपनी तमाजत पर,
0: वाह बहुत खूब,
2: सूरज को मौज है ना यार,
0: हाँ, हाय हाय हाय, क्या मौज में, वाह क्या कहने।
2: बजा है जोम सूरज को भी नाज अपनी तमाजत पर,
0: वाह,
2: हमारे शहर में भी मोम के पैकर नहीं रहते।
0: वाह वाह वाह वाह, वा, मकरर जी मकरर, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
2: आप समझ पाए शेर,
0: वाह मेरा के, क्या कहने, कमाल कमाल,
2: बेमिसाल। बजा है जोम,
0: वाह,
2: बजा है जोम सूरज को भी नाज अपनी तमाजत पर,
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने।
2: हमारे शहर में भी मोम के पैकर
0: नहीं रहते। हाय हाय हाय, बहुत ही कमाल का, ओए होए होए होए होए, पाई का शहर, हाय हाय, क्या कहने, वाह।
2: तो परवेज भाई, मैं आपकी नजर कर दिया, आपकी मेहरबानी है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का।
2: ये है
0: जी जी,
2: जो मैंने सुनाया है ना,
0: मैंने कमाल कर दिया, सब ने एंजॉय किया और हमने इंजॉय किया, और सब सुनने वाले और राय अदर सैन साहब हैं और जो शायरी को पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, वो आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आपने
2: देखे
0: जी,
2: मैंने बहुत सुना सुनाया
0: जी,
2: यकीन मानिए मेरे दिल के करीब तीन ये चीजें मैंने आपको आज सुना,
0: मैंने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया।
2: सोहत रसात सिर से गंड,
0: हाय हाय हाय, सोने पे सुहागा हो गया, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा, और हमारे शकील साहब आएंगे उसका जी।
2: एक बात कहूँ
0: जी,
2: कि वो जगजीत सिंह ने चीज गाई थी
0: जी जी,
2: और ये बड़ी कीमती अहले ज़ौक के नाम है के
0: जी जी जी।
2: अब मेरे पास
0: हाय हाय हाय हाय,
2: तुम आई हो तो क्या आई हो,
0: वाह,
2: अब मेरे पास तुम आई
0: हो तो
2: क्या आई
0: आई हो, हाय हाय हाय,
2: मैंने माना कि तुम एक पैकरे दाना,
0: हाय हाय हाय, क्या बात आपने
2: पाई, मेहर हो फिर दोस्त की बनाई,
0: हाय हाय हाय हाय, कमाल।
2: कभी किसी को सुना दीजिए तो समझ,
0: बहुत शुक्रिया मेरे भाई, और आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अतिका साहब है वो फ्लश कर रही है, आपका शुक्रिया अदा कर रही है, उन्होंने एंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया
2: जी ना तो शेर मुकम्मल होता है ना बात मुकम्मल।
0: हाय हाय हाय हाय हाय ब्यूटीफुल शायरी
2: जाना चाहते हैं पहुंचे ना
0: बहुत ही खूबसूरत। मैं कह रहा हूं कि राय अदर हुसैन साहब ने आपने उन्होंने आपको शुक्रिया अदा किया और अतिका साहब ने शुक्रिया अदा किया, हमारे डॉक्टर मलिक साहब उनकी फैमिली प्रोग्राम सुन रहे हैं उन्होंने शुक्रिया अदा किया मेरे भाई का और
2: बड़ी
0: मेहरबानी बहुत बहुत
2: शुक्रिया।
0: बहुत ही कमाल बेमिसाल मेरे भाई और पाए की शायरी थी और आवाज़ भी खूबसूरत अंदाज भी खूबसूरत है और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह पाक हमेशा को खुश रखे शाद आबाद रखे और ऐसे ही खिलते रहें और मुस्कुराते रहें माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत है आपकी माशाल्लाह क्या बात है पर्सनालिटी आपकी बड़ी खूबसूरत है बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई बहुत बहुत नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी थैंक यू। वाह बेमिसाल और कमाल की शायरी इन्होंने की है और बड़ी ही खूबसूरत शायरी की है और यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे। ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे हमारे मोहतरे में हमारे दिल अजीज हैं बड़े प्यार करने वाले वो भी हमारा साथ दे रहे हैं बहुत शुक्रिया इनका और यहाँ भी छोटी सी ब्रेक करेंगे। कीप इट लॉक्ड और यहाँ भी मेरा साथ देने हमारे दिल अजीज हमारे मोशन प्यार करने वाले हैं और जितनी इनकी मैं तारीफ करूँगा मैं बिलीव करें बड़ी खूबसूरत शायरी करते हैं बेमिसाल बेकमाल और क्या कहेंगे इनके बारे में और ये हैं हमारे साथ दे रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यहाँ पे मेरा साथ देने शकील साहब हमारे मुर्शिद हैं वेलकम जी अनु खुश आमदीद।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी तबीयत है मेरे भाई की? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ये सुन के मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह पे माशाल्लाह आप ठीक ठाक हैं सही ठीक है माशाल्लाह आपकी और मौसम भी आप इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने मुझे कीमती वक्त दे रहे हैं।
3: ठीक सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: अगर सुन रहे हो जावेद मीर साहब हैं
0: जी,
3: वाजिद भाई हैं, डॉक्टर मलिक साहब हैं
0: जी,
3: अयूब भाई हैं, मुदस्सर भाई, नवीद भाई अभी आए थे
0: जी,
3: वालेकुम चौधरी साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं
0: जी,
3: तारिक जुल्फी चौधरी, रुपया साहब हैं
0: जी,
3: चौधरी नीफ साहब, हीरा खान हैं, रायत हसैन साहब
0: जी,
3: अख्तर साहब, कयूम साहब है, अली भाई है, नदीम मंसूर, साजिद भाई है, शबरेज साहब
0: जी,
3: सारा साहब, टीका जी
0: जी,
3: सुमित्रा बहन है, गजाला साहब, रुखसाना साहब,
0: माशाल्लाह,
3: अलसूम साहब है, सिमी जी है, अमीदा जी है,
0: माशाल्लाह,
3: फरी है,
0: वाह
3: वालेकुम
0: अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
3: तो गजल है आयतुल्लाह खान शमसी लिखने वाले हैं
0: जी जी अरशाद।
3: वो कहते हैं दिन रात तुम्हारी यादों से हम जख्म संवारा करते
0: हैं। हाय हाय हाय क्या कहने बहुत खूब वाह।
3: दिन रात तुम्हारी यादों से हम जख्म संवारा
0: करते हैं वाह वाह।
3: परदेश में जैसे तैसे ही ए दोस्त गुजारा
0: करते हैं वाह वाह क्या कहने क्या कहने वाह।
3: खुददार तबीयत है अपनी फाकों पे बसर कर लेते हैं
0: वाह वाह।
3: खुददार तबीयत है अपनी फाकों पे बसर कर लेते
0: हैं वाह वाह।
3: एहसान किसी का दुनिया में हरगिज न गवारा करते
0: हैं। हाय इसको मुकरर कर दी वाह जी वाह कमाल कर दी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाह वाह।
3: खुददार तबीयत है अपनी फाकों पे बसर कर
0: लेते हैं वाह वाह।
3: एहसान किसी का दुनिया में हरगिज न गवारा करते
0: हैं। हाय हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह
3: शुक्रिया। अब लाख खिजाओं का मौसम भी कुछ न गिलों का कर पाए
0: वाह बहुत खूब।
3: लाख खिजाओं का मौसम भी कुछ न गुलों का कर पाए
0: वाह।
3: हम खूने जिगर से गुलशन का हर रंग निखारा कर
0: आए वाह वाह वाह वाह वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब वाह
3: तो परवेज भाई
0: जी जी
3: कतराफ हमारे लोगों की एक भीड़ थी जब तक पैसा था
0: आए हाय हाय हाय वाह
3: अतराफ हमारे लोगों की एक भीड़ थी जब तक
0: पैसा था वाह वाह
3: ये जेब हुई अब खाली अब लोग किनारा
0: आए आए दोबारा जी मुकर्रर जी मुकर्रर क्या कहने जी वाह बहुत खूब कर
3: अतराफ हमारे लोगों की एक भीड़ थी जब तक पैसा था
0: वाह क्या कहने
3: ये जेब हुई अब खाली तो सब लोग किनारा करते
0: आए हाय हाय वाह जी वाह क्या कहने बेशक बेशक वाह
3: जब उनके मुकाबिल होते हैं वो बात नहीं
0: करते वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह
3: जब उनके मुकाबिल होते हैं बात नहीं करते हमसे
0: वाह
3: दूर नजर से होते ही बस जिक्र हमारा करते
0: ओए होए होए होए होए क्या कहने क्या कहने क्या कहने वाह बहुत
3: जिक्र करते हैं
0: जी जी
3: क्यों जख्म दिखाएं हम शमसी
0: हा हा हा
3: क्यों जख्म दिखाएं हम शमसी अब कौन लगाएगा मरहम
0: वाह
3: क्यों जख्म दिखाएं हम शमसी अब कौन लगाएगा मरहम
0: वाह
3: अब लोग तो दिल में हंस हंस कर खंजर ही उतारा
0: करते हैं वाह वाह वाह वाह बहुत खूब वाह वाह वाह क्या कहने वाह
3: एक जावेद जावेद जमील है उनकी गजल है
0: जी जी अरशाद अरशाद अरशाद
3: कहते हैं करता है बेकार की बातें काम की कोई बात नहीं
0: हाय हाय हाय क्या कहने वाह
3: करता है बेकार
0: की बातें काम की कोई बात नहीं
3: गैरों जैसी बात है तेरी अपनों जैसी बात
0: नहीं हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह क्या कहने बहुत खूब वाह
3: महफिल में जिसको भी देखो रूठा रूठा लगता है
0: हाय हाय हाय हाय वाह
3: महफिल में जिसको
0: भी देखो रूठा रूठा लगता
3: है करवाहट है आवाजों में कोई मीठी बात नहीं
0: करता वाह वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने वाह बहुत खूब
3: महफिल में जिसको भी देखो
0: वाह वाह
3: है करवाहट है आवाजों में कोई मीठी बात नहीं
0: करता वाह वाह वाह वाह
3: कलमा तेरा सपना तेरा फिक्र तेरी और क्या ख्याल
0: बहुत खूब बहुत खूब
3: कलमा तेरा ना तेरा फिक्र तेरी और तेरा ख्याल
0: वाह
3: सिर्फ तेरी ही बात जुबान पर और किसी की बात
0: आए हाय हाय हाय हाय हाय वाह वाह बेमिसाल कमाल कमाल
3: कहने को तो कह दी तूने अपने दिल की सारी बात
0: बहुत खूब बहुत खूब
3: कहने को तो कह दी तूने अपने दिल की सारी बात
0: वाह
3: सच्चाई ये है लेकिन ये के ये भी सारी बात
0: आए हाय हाय हाय वाह वाह वाह वाह वाह क्या कहने
3: कैसे मिले हम तुमसे यारो
0: वाह हा हा
3: कैसे मिले हम तुमसे यारो बुलाएं कैसे बुलाएं घर अपने
0: वाह वाह
3: गम ही गम है पास हमारे खुशी की बात नहीं
0: हाय हाय हाय हाय क्या कहने बहुत खूब वाह
3: ना इंसाफी हर जानिब है हर जुल्मत ही जुल्मत
0: वाह
3: ना इंसाफी हर जानिब है हर जुल्मत ही जुल्मत
0: वाह
3: देख के ये सब क्यों चुप है कहते हक की बात नहीं
0: हाय हाय हाय हाय हाय वाह जी वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब वाह
3: पहले क्या क्या कुछ कह डाला
0: वाह
3: पहले क्या क्या कुछ कह डाला फिर ये कहकर मुकर साफ गए
0: हाय हाय हाय हाय वाह वाह
3: कर डाली है भूल जबाने सोची समझी बात नहीं
0: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब
3: आखिरी शेर
0: जी जी
3: तेरे लिए ही जीता हूँ तेरे लिए मरता हूँ परवेज
0: जी बाबा बहुत खूब
3: मुंह देखी जावेद है बातें दिल से निकली बात नहीं
0: आए आए आए आए मकरर जी मकरर वाह वाह वाह वाह बहुत खूब
3: तेरे लिए ही जीता हूँ और तेरे लिए ही
0: मरता हूँ
3: मुंह देखी जावेद है बातें दिल से निकली बात नहीं
0: आए हाय हाय हाय हाय क्या कहने मजा आ गया जी क्या कहने बहुत खूबसूरत वाह वाह बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, आपने महफिल लूट ली मेरे भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका शुक्रिया अदा करें हमारे अली भाई हैं, शबरेज भाई हैं, वो आपका शुक्रिया अदा करें, और बेमिसाल की शायरी आपने की, कमाल की शायरी की है, और पाए की शायरी की, और आदिल सुहेल अख्तर साहब आपको सलाम पेश कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए बहार आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, वाह। ये थे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे दिल अजीज, बहुत प्यार करने वाले, हम इनसे प्यार करते हैं, पूरा यॉर्कशायर इनसे प्यार करता है, और ये मेरे उस्ताद हैं माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और इनकी जो गुफ्तगू होती है बड़ी इल्मी गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह, बड़ी इल्मी माशाल्लाह, और बड़ी निचोड़ इसमें हर अल्फाज में, और कुछ ना कुछ होता है माशाल्लाह, और बड़ी सबक मौज गुफ्तगू करते हैं, और शायरी भी बड़ी कमाल की, और की हस्ती की शायरी करते हैं, और वो भी कमाल के हैं, और ये ख़ुद भी कमाल के हैं, ये हैं हमारे मोहतरम एम खान जी हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जो ये कल मात मेरे नाचीज के बारे में कहें, अल्लाह आपके आते और सुनने वाले शायरा और शायर जितने खवातीन और हजरात उन सब के हक में अल्लाह ये खूबसूरत कलमात सबको
0: आमीन
4: नसीब, तो आपका शुक्रिया। अलमा इकबाल इरशाद फरमाते हैं,
0: जी जी इरशाद,
4: फकर चंगा में बेसाजो यरा कहता है,
0: वाह क्या कहने,
4: जरब जरब कारी है अगर सीने में,
0: वाह
4: है कलबे सलीम,
0: वाह
4: उसकी बढ़ती हुई बेबाकियों बेताबी से,
0: वाह वाह वाह,
4: ताज़ा हर ऐद में है किस्सा फिरऊन व कलीम,
0: वाह क्या कह रहे, बहुत खूब
4: मियां साहब का,
0: जी जी अपना अंदाज़ है इनका, जी
4: चार मियां साहब का एक अपना मकाम है,
0: जी जी
4: मियां साहब ने मौजूदा जमाने के बारे में,
0: जी जी
4: बड़ा खूबसूरत नसीहत किया है,
0: जी जी
4: लुत्फ करेंदा करम कुनंदा,
0: हाँ हाँ
4: हाँ क्या कह काम लुत्फ करींदा करम करींद करम करींदा हर दे काम सवाले,
0: वाह
4: सब खलकत दार राखा ओ हो पहचाने सा,
0: वाह जी वाह क्या कहने, बहुत खूब,
4: सब खलकत दार राखा ओ हो पेट पहचाने सारे,
0: वाह
4: अब वडियाईया उस नु लायक बे परवाह हमेशा,
0: वाह वाह वाह वाह,
4: एक ना दा ताज सादत देंदा,
0: बहुत खूब,
4: एक ना दा बद अंदेशा,
0: वाह वाह वाह,
4: ऐब मेरे पर पल्ला देंदा, ऐब मेरे पर पल्ला देंदा,
0: वाह वाह,
4: हुनर कहंदा जाहिर,
0: वाह वाह
4: वाह, तेरी अच्छाइयां हैं वो जाहिर करता,
0: जी जी जी,
4: जदू करम दा वार करदा,
0: वाह
4: कोई ना रहंदा बाहर,
0: वाह वाह वाह,
4: हर आजज पर रहमत करदा, करे कबूल दवाई,
0: वाह जी वाह,
4: बिन मंगे जान दवाए,
0: वाह
4: नरम दिल दा साईं,
0: वाह जी वाह,
4: हर कोई मोहताज उसे दा, मंगल हारा दारा,
0: वाह वाह जी वाह वाह वाह,
4: हर गिज की उसी उत्ते,
0: वाह
4: उंगल कोई ना तरदा,
0: वाह वाह वाह वाह बहुत खूब, वाह
4: दानिश्वर, एक दानिश्वर ने कहा कि
0: जी जी
4: अगर कोई भी दुनिया के जिसके ऊपर इंसानी
0: जी
4: लफ्ज़ जाहिर होता है, ने कहा कि जिस वक्त आदमी खाना खाता है जो लोग काम फैक्ट्रियों में करते हैं उनको मालूम है,
0: जी जी
4: हम फैक्ट्री में वो सेट ऐसा करते थे जो वगैरह जो गाड़ी के जिनमें डाला जाता खराब नहीं होता,
0: जी
4: वो बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह करीम ने ये मुंह के अंदर जो सिस्टम रखा है,
0: जी जी
4: उसको इतना सेट किया है कि इसको चबाने का वो जितना उसने रखा है जब तक वो चुबाए ना चुबाएगा ना उसके अंदर मैदा खराब होगा,
0: मैदा खराब होगा, जी
4: ऐसी नियामत रखी है
0: जी जी
4: उसको
5: दबाने का उतना सेटअप किया है ताकि उसके बगैर उसके हाथ से नीचे नहीं जाता। दानिशवर कहते हैं कैसा अच्छा हो, नियामत का हर ग्राह के हर लुक में के एंड पर शुक्रिया अदा करके या अल्लाह तूने कैसी खूबसूरत मिशनरी मेरे
0: माशाल्लाह
5: वो मैंने खूबसूरत खाया इसको फिर मैं ऐसा असर कर कोई बीमारी कोई
0: बीमारी माशाल्लाह
5: कोई चीज पैदा न हो। शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ये होती है इल्मी गुफ्तगू, ये होती है, देखो कितने निचोड़ इन्होंने निकाला माशाल्लाह। ये है हमारे अहम खान जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। अल्लाह पाक मिशन को खुश रखे, शादाबाद रखे, अल्लाह पाक मिशन को इनके लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इन्होंने कमाल ही कर दिया माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, बहुत अच्छा लगा। और बहुत बहुत शुक्रिया अहम खान जी, आप आए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, बड़े अच्छे खूबसूरत शायरी आपने की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मौजूद मेहमान है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका।
6: Three-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
7: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। और ये जो खूबसूरत है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही नायाब, ये हमारे भाई आ चुके हैं माशाल्लाह, अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग। जितनी इनकी मैं तारीफ करूं, गाना हो या शायरी हो, बेमिसाल कमाल की शायरी करते हैं। और वाकई इनके चाहने वाले माशाल्लाह योगशर में हमेशा हमें फ़ोन करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, दुआएँ करते हैं इनके लिए। द फीडबैक हैज़ बीन वंडरफुल। और मैं किस किस की यहाँ पर मैं तारीफ करूँ, यहाँ पर कहेंगे वेलकम जी एन खुश अहमदीद अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
8: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी, मैं
0: आपके हकदार हैं मेरे भाई, आप हकदार हैं, इसका हकदार हैं।
8: मैं यही कहूंगा कि आप सबसे अव्वल हैं।
0: माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह का
8: शुक्रिया। अतीका बहना जो सबसे पहले मैं चाहती
0: हैं, वो आपको याद करते हैं, आपको बुलाते हैं,
8: मुझे मैं सुनता रहता हूँ उनकी खिदमत में भी। ये जो गीत है उन्हीं के लिए, उनकी खिदमत के लिए। तो इससे पहले कि कुछ गुनगुनाऊं तमाम सुनने वालों को जो इस वक्त गर्म बाजारों के फैक्ट्रियों के कारण जहाँ के भी ये प्रोग्राम सुना जा रहा है, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है ये फिल्म में एक दो दफा मैं ये गाना गा भी चुका हूँ। फिल्म शर्त से है ये गीत।
0: शर्त से, जी
8: हेमंत कुमार की आवाज में। तो मेरा ख्याल है अगली दफा इससे पीछे मैं जाऊंगा, कोशिश करूंगा वो पुराने जो गीत है ना वो। गला बहुत ही कुछ खराब है, चलो कोशिश करूंगा।
0: जी
8: न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा,
0: क्या कह रहे,
8: न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा,
0: वाह वाह।
8: जमाना अगर कुछ कहे भी तो क्या,
0: वाह वाह।
8: मगर तुम न कहना हमें बेवफा,
0: व
9: वाह जी वाह।
10: तुम्हारे लिए हैं तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। बिछड़ चले जाए तुमसे कहीं तो ये न

रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा।

0: जाना
1: वाह
0: हाँ, मोहब्बत के मारे रहेंगे ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे ना ये चांद होगा।
1: क्या कहने,
0: बहुत शुक्रिया जी,
1: बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज और जो गाना आपने चुना है, इस गाने में मैं बिलीव करने के मैं गाने में खो गया, मैं इतना प्यार के साथ मैं गाना सुन रहा था। वाह क्या कहने,
0: दरअसल जो मेरी आवाज थी वो आवाज
1: नहीं ये आपकी बिलीव करने के आपकी खूबसूरत आवाज है, बट बिलीव करें वो मैं मुझे हमेशा में गाना आपके लिए भी करता हूँ कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी इतनी खूबसूरत आपकी आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज आपकी, ऐसा ना
0: कह सकते हैं कि हम जवान हैं लेकिन जवान नहीं
1: है। नहीं अल्लाह पाक आपको हमेशा
0: चलो तमाम सुनने वालों के बार फिर और जिन्होंने मुझे बर्दाश्त किया।
1: नहीं नहीं बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही लाजवाब गीत, बड़ा ही प्यारा गीत, क्या कहने, वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया शाहरा, आपने बड़ा ही खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया और बड़े दिनों के बाद मैंने गाना सुना और बहुत बहुत शुक्रिया शाहर, बहुत अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह अल्लाह हाफिज। और यहाँ पे हमारा साथ देने हमारे लाडले हैं, हमारे प्यारे हैं, हमारे खूबसूरत हैं, और जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है, ये हमारा बहुत ही लाडला है और खूबसूरत इंसान है माशाल्लाह, और जितनी भी की मैं तारीफ करूँ कम है। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और आप आए और बाहर आ गई है और बहुत ही अच्छा लगा। ये है हमारे भाई, हमारे दिल जानी, हमारे जानी आगे हैं, और जानी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, शुक्रान भाई है यहाँ पे।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि
1: व बरकातुहु, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत मीठी खूबसूरत आवाज़ आज आपकी आवाज़ आ रही है, आवाज़ भी आ रही है, ठंडी ठंडी आवाज़ आ रही है, और इतना खूबसूरत लग रहा है कि भाई आ गया माशाल्लाह, क्या कह रही
2: है माशाल्लाह। और शादी कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र करम, आपकी दुआ है माशाल्लाह, आपकी दुआ।
2: तो लास्ट वीक भी मैंने कोशिश की थी आज रील लगवाने की, लेकिन बिजी बहुत था।
1: जी जी माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कोई बात नहीं, और गैर हाजिरी आपकी गैर हाजिरी वैसे लग गई है, और आपको जुर्माना भी होगा
2: इंशाल्लाह।
1: जी
2: ताजी शेर एक छोटा सा।
1: जी जी अच्छा।
2: जब मैं बच्चा था तो अक्सर खिलौने टूट जाते थे,
1: वाह
2: मेरे रोने पे माँ आकर जोड़ देती थी,
1: हाय हाय क्या कहने, वो भी कैसे दौड़ते मेरे भाई, हाय हाय हाय।
2: जब मैं बच्चा था तो मेरे अक्सर खिलौने टूट जाते थे, मेरे रोने पे माँ आकर जोड़ देती थी,
1: वाह
2: सुना है माँ से भी ज्यादा तो जो उल्फत है अपने बंदों से,
1: हाय हाय हाय बेशक, क्या कहने क्या कहने, वाह
2: सुना है माँ से भी ज्यादा उल्फत है तुझे अपने बंदों से,
1: वाह
2: मुझे आकर जोड़ दे यारब
1: यारब, हाय हाय हाय
2: मैं खुद को तोड़ बैठा हूँ,
1: हाय हाय हाय सुभानअल्लाह, क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, इतनी खूबसूरत शायरी कहाँ से ढूंढ के लेके आते हैं मेरे भाई, कमाल की बेमिसाल, वाह।
2: तो गाना सर जी फरमाइश चाहिए थी मुझे।
1: जी जी जी
2: तू पास है मेरा कोई एहसास हो जाए, मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होंठों पे लम्हा लम्हा,
1: क्या कहने
2: है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं, बीते लम्हों से दुनिया बता लूं,
1: हाय हाय
2: मैं तो तेरे आंसुओं का बना हूँ, मेरी हंसी में तेरी सदाएं,
1: हाय हाय हाय
2: तेरी कहानी तुझको सुना,
1: वाह वाह
2: यादों के तारे
1: वाह वाह
2: यादों के तारे टूटेंगे कैसे मेरे हैं जो रूठेंगे कैसे बीते लम्हों की खोली किताबें गुजरे पलों को कैसे भुला दूं आए मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं जिस रोज हम तुम फिर से मिलेंगे वो सारी बातें तुम तो कहेंगे दुनिया में चाहे बन जाए जो भी तेरे बिना हम खुश ना रहेंगे आए मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं सैयारा तू तो बदला नहीं है
1: हाय हाय
2: मौसम गरा रूठा
1: मेरे भाई कमाल कर दिया ये मेरा फेवरेट गीत है 2026 का फेवरेट गीत है क्या गीत आपने गुनगुनाया मेरे भाई थैंक यू वेरी मच आपने महफिल लूट लिया और क्या खूबसूरत आपको बॉलीवुड में मेरे भाई होना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और क्या कहने मेरे भाई क्या गीत आपने गुनगुनाया वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाह और आपने जब आपको मौका मिले ना आपने फिल्म देखनी है ठीक है ये आपने फिल्म देखी
2: देखिए
1: दोबारा को देखे दोबारा को देखे ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया सर बहुत बहुत शुक्रिया रब रखे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया

0: Wow, wow, beautiful. What a beautiful track. That was one of my favorite tune. और ये मैंने पहली दफ़ा गाना पेश किया था थंडर रेडियो में, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैनेजमेंट का जिन्होंने ये गाना मेरे लिए और उन्होंने यहाँ पे अपलोड किया था. बहुत बहुत शुक्रिया उनका. थैंक यू वेरी मच ऑल द टीम ऑफ थंडर रेडियो साल. थैंक यू वेरी मच. क्या गीत है और क्या खूबसूरत गीत था. और फिल्म जो ना मैंने देखी है, आई हैव सीन दिस फिल्म अबाउट 10 टाइम, बिलीव इन. और जब फेक डे द केम इन रिलीज द मूवी, एंड व्हाट अ मूवी, what a movie. If you have not seen the movie, you have to watch the movie. और बहुत बहुत शुक्रिया इन सब का भी हमारा साथ देने का. बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी. हमने एक टाइम चेक करना है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पे हमने करना है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारा साथ दे रहे. देखो ये कौन है हमारी महफल में. और यहाँ पे टाइम चेक करना है.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Cam in the studio is 43 minutes past 10 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan. Yahan pe chote se break karenge. Break ke foran baad aapke liye yahan pe surprise hai. Yahan pe kaun aaya hamari mehfil mein. Aur bahut bahut shukriya inka bhi. Sunrise Music.
2: Teri गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया.
3: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना.
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने.
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता.
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935.
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
0: वेलकम बैक लिसनर. यू लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम. बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जो हमारा साथ दे रहे हैं. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारी बहुत ही प्यारी बहना हैं. और वेलकम कहेंगे, जी आए कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे इनको. और बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें हमारे लिए टाइम निकाल के इन्हें फ़ोन कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. और आपके लिए सरप्राइज़ है यहाँ पे. वो कौन है और कहाँ से, वेलकम कहेंगे, जी आए कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
6: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. ये किसकी खूबसूरत आवाज है?
6: ये पहचानने वाले पहचानेंगे.
0: हाय हाय हाय, पहचाने ने उन्हें पहचान लिया ना. तो पता लगे ना सब कुछ सुनने वाले कि वो कौन आया हमारी महफिल में, कौन है. हमें तो पता है क्योंकि यहाँ पे आपका खूबसूरत नाम लिखा हुआ है. और हम कहते हैं कि आपकी खूबसूरत आवाज़ में हम सुनेंगे ना कि अच्छा लगेगा, सुनने वालों को अच्छा लगेगा. और सब सुनने वाले थोड़ी रेडियो कॉल करीब आ जाओ या रेडियो की आवाज़ ऊपर कर लो. और थोड़े क्या करने बादशाह ना कर सो, ऐसे थोड़ा और आवाज़ ऊपर करो, थोड़ा नेड़े आ जाओ, नेड़े नेड़े नेड़े आ जाओ. जी बिस्मिल्लाह जी.
6: मेरा ख्याल है पहचानने वाले तो बहुत पहचान गए.
0: नहीं नहीं, वो तो पहचान गए ना. जो जो जिन्होंने नहीं पहचाना तो वो क्या करेंगे बेचारे.
6: वो गुमनाम.
0: गुमनाम नहीं, नहीं नहीं, इतना प्यारा नाम आपने लिखा. हमारे नाम आपका है और बहुत खूबसूरत नाम लिखा भी है यहाँ पे कंप्यूटर में. और दुनिया आपको पहचानती है. यहाँ पे हमारा साथ देने, आप मुझे बता देना क्या है इसमें. और सब सुनने वाले माशाल्लाह जी. और जी मैं कह दूँ, मुझे बताया
6: अब मेरा नाम ही मैं खुद ही लेना पड़ेगा.
0: मैं यहाँ पे आपको वेलकम कहता हूँ, जी कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ. गजाला जबीन हमारा साथ देनी हमारी बहुत ही प्यारी बहना है. वेलकम जी अनु, खुश आमदीद. मैं कह रहा हूँ कि जो जो ने सुना नहीं है ना तो वो सुन लेना. और यहाँ पे जी मेरी बहना.
6: थैंक यू, बहुत शुक्रिया. मैंने कहा मेरे दो भाई मुझे बहुत याद करते
0: जी.
6: एक लाला फरियाद
0: जी
6: और दूसरा शकील साहब.
0: माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक है ही नहीं है. और मैं जी
6: उनका शुक्रिया भी अदा करने आई हूँ और उनके लिए आई.
0: हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने. वो प्रोग्राम सुन रहे हैं और लाला फरियाद साहब हमारे साथ दोबारा वो आ चुके हैं. वो भी हमारा साथ दे रहे हैं माशाल्लाह जी.
6: बाकी जो नहीं जानते वो जान जाएंगे।
0: जी जी, और सब आज हो ना, आज सब जानते हैं आपको। गजाला जबीन हमारा साथ दे रही माशाल्लाह, जिन्हें नहीं पहचाना उन्होंने पहचान लिया, गजाला जबीन है हमारी प्यारी बहना है मैनचेस्टर से माशाल्लाह। जी
6: तो मैं सब

0: काफी देर हो गई है रेडियो पे नहीं आ रहे, मेरा कल उनकी तबीयत कुछ सही नहीं है।
1: अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करे जी।
0: इंशाल्लाह सबके लिए दुआएं भी हैं
1: जी जी।
0: और मेरा पीछे लाइन लगी होगी, आपका माशाल्लाह प्रोग्राम इतना बिजी होता है,
1: माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपकी दुआएं, आप मेरे लिए दुआएं करती हो ना, तो उसका नतीजा है ना, उसका उसका उसका फल है, उसका फल जी माशाल्लाह जी, उसका फल है।
0: चलो ये छोटी सी गजल है
1: जी जी, अहमद
0: खदास साहब की।
1: हाय हाय हाय, क्या कहने अरशाद।
0: ये क्या किस्मत से बयाने दिल की हालतें करनी,
1: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
0: ये क्या कि सबसे बयाने दिल की हालतें करनी, फरार तुझको ना आई मोहब्बत ने करनी।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब,
0: थैंक यू
1: वाह।
0: फरार तुझको ना आई मोहब्बतें करनी,
1: वाह
0: ये कुर्ब क्या है,
1: वाह
0: कि तू सामने है और हमें शुमार भी,
1: वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
0: और हमें शुमार अभी से जुदाई की साते हैं,
1: वाह जी वाह।
0: ये कुरब क्या है कि तू सामने है और हमें शुमार अभी से जुदाई की साते करनी,
1: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह, क्या कहने।
0: कोई खुदा हो कोई खुदा हुआ के पत्थर जैसे भी हम चाहें, कोई खुदा हो पत्थर जिसे भी हम चाहें, तमाम उम्र
1: वाजिबा
0: इसी की इबादतें कर ली।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, कमाल की, बहुत खूबसूरत, वाह।
0: अब अपने अपने
1: वाह
0: करीने से मुंतजिर इसके, सब अपने अपने करीने से मुंतजर इसके,
1: वाह
0: किसी को शुक्र की क्या शिकायत करनी।
1: आए हाय हाय हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह, कमाल कर, बहुत ही खूबसूरत जी।
0: सब अपने अपने से मुंतजर इसके, किसी को क्या शिकायत करनी,
1: वाह जी वाह, बहुत खूब।
0: हम अपने दिल से ही मजबूर और लोगों को, हम अपने दिल से ही मजबूर और लोगों को,
1: वाह
0: जरा सी बातें बरपा क्यामतें करनी।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, वाह वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, क्या बहुत,
0: जरा सी बातें बरपा क्यामतें।
1: हाय हाय हाय, क्या कहने।
0: मिले जब इनसे
1: वाह
0: तो मुहिम थी गुफ्तगी करें।
1: हाय हाय हाय हाय हाय, वाह।
0: फिर अपने आप से सौ सौ वजाहतें करनी।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: थैंक यू भाई। फिर अपने आप से सौ सौ वजाहतें
1: करनी, वाह वाह।
0: ये लोग कैसे मगर दुश्मनी निभाते हैं,
1: वाह
0: हमें तो रात ना आई मोहब्बतें करनी।
1: हाय हाय हाय, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।
0: हमें तो रात ना आई मोहब्बतें करनी, कभी फरास नए मौसमों में रो देना।
1: आहा,
0: कभी फरास नए मौसमों में रो देना,
1: वाह।
0: कभी तलाश पुरानी रफाकतें करनी।
1: आए हाय आए हाय, वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
0: कभी तलाश पुरानी रफाकतें करनी,
1: वाह
0: ये क्या है सबसे बयां दिल की हालतें करनी।
1: वाह जी वाह,
0: तलाश तुझको ना आई मोहब्बतें करनी,
1: वाह।
0: थैंक यू भाई, बहुत
1: बहुत, बहुत शुक्रिया आपका
0: भाई। और मेरे जो मुन्ना का एक भाई है
1: वाजिद भाई और फरियाद भाई, आपको सलाम पेश
0: कर फरियाद
1: जी, वाह वाह वाह,
0: मेरा बहुत बहुत सलाम।
1: और आपको
0: उनके लिए आई हूँ क्योंकि हर दफा मुझे याद करते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आइए, बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए आइए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपको सलाम पेश कर रहे हैं हमारे हमारे मोहतरम हैं शकील साहब, आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका।
0: थैंक यू, बहुत बहुत आई
1: माशाल्लाह, क्या कहें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ये आपके लिए जाने से पहले, ये आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, रब रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे हमने अजान पेश करनी है, कीप इट लॉक्ड विद द सनराइज़ रेडियो 103.2 FM।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: गाइस वेलकम बैक लिसनर यू आर लिसनिंग रेडियो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ गजल जबीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इन्होंने हमें याद किया बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपने हमें याद किया और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम भाई दोस्त हैं और चौधरी फरियाद साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी हजूर
1: चौधरी
0: बिस्मिल्लाह तो खानी पहन उन्होंने सलाम दे करने देखूंगी गजला जमीन साहब ने फ़ोन किया और आपके लिए शेर शायरी की आपके उन्होंने सलाम भी पेश किया जी
1: जी बिस्मिल्लाह प्रोग्राम खत्म है
0: अभी दो मिनट हैं कुछ पढ़ना चाहते हैं तो दो मिनट पढ़े और वो आपके लिए आए उन्होंने आपको लिए सलाम पेश किया जी
1: चलो शुक्रिया बाजी उन्होंने मेरा सलाम भेजो पूरी टीम जी नशीन की मेरा सलाम और
0: और नशीन साहब ने दो दफा फोन किया उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया और सब ने शुक्रिया अदा किया फर्दन फर्दन सबका अभी भी टाइम कम है तो नेक्स्ट आवर में आपके लिए इंशाल्लाह जो आने वाला प्रोग्राम है उसमें आपको शुक्रिया अदा करेंगे दोबारा आपके पास टाइम है अभी करें शेयरी शेयरी करें जी बिस्मिल्लाह करें
1: चलो मैं
0: एक
1: बिस्मिल्लाह करा लिखने ने कि जो बन भी राज राज बहार लुट ले
0: वाह वाह वाह क्या कहने
1: जोबन दी राज राज बहार लुट ले रे ना रुत सहानी ते फेर पुछता
0: वाह
1: इस हुसन दे किले गुलजार ते चाई नेरी तफानी ते फेर पुछता
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: वफादार जा छोर तमाम नठे हुई खत्म कहानी ते फेर पुछता
0: वाह वाह
1: हाले लुट ले मौजा तू अली मजा टल गई जवानी ते फेर पुछता
0: हाय हाय हाय क्या कहने
1: वाह क्या फेर लगती खिजां दा पैरा जनाब जदों लुट गया गुलजार ते फेर पुछता
0: वाह
1: की दर्द विछोड़े दा दर्द आंदा
0: वाह
1: की दर्द विछोड़े दा दर्द आंदा सीने चुप तनखा ते फेर पुछता
0: वाह जी वाह क्या कहने
1: पहरे वांग तो जल जल विच यादा कर कर रोते बकार ते फेर पुछता
0: वाह
1: आले लुट ले मौजा तू वाली अमदा रंग गई बखार ते
0: फेर
1: पुछता
0: हाय हाय हाय हाय हाय चौधरी साहब मनी गया वाह
1: लुक छुप अथरू बरसाते फेर पुछता लुट दे मौजा तू अली जद कला हो जाते फेर पुछता
0: वाह चौधरी साहब
1: भाई
0: वाह
1: शुक्रिया
0: बड़ी मेहरबानी क्या टाइमिंग मेरे भाई की क्या बात है जबरदस्त टाइमिंग मेरे भाई की बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच और जाने से पहले ये आपके लिए अल्लाह सुनने वाले बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ राय साहब दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया हम हैं राय प्यार के फिर मिल गए चलते चलते अल्लाह हाफिज़ अन शब है
2: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
3: At 11, Andy Burnham will use his first speech as Prime Minister tomorrow to tell the nation that he will restore confidence in government. He'll say he's acutely conscious of being the sixth person to move into number 10 in a decade. Meanwhile, Donald Trump's claims the new Labour leader is about to allow new oil and gas drilling in the North Sea. That's despite there being no confirmation from Mr. Burnham, who's hinted it could play a greater role in UK energy. The US president's long called for the expansion of the drilling, and claimed it was the downfall of the new PM's predecessor.
4: I gave Keir Starmer some pretty good advice. I said, open up the North Sea. Go to Aberdeen, which was the hottest city in the whole continent. It was the oil city, it was the oil of Europe. And they closed everything.
3: Southeast Water says supplies have returned to customers in West Kent who'd seen it disrupted over the weekend. Up to 7,000 households in the Tunbridge Wells and Pembury areas had low pressure or no water at all. A man's been injured after a ship reportedly collided with a crane in the port of Tyne. Emergency services were called to the scene in South Shields just after one this lunchtime. The man's injuries aren't thought to be life-threatening. Spain are edging towards victory in the World Cup final. Our sports editor, Joe Rawson's in New Jersey.
5: It took 106 minutes, but Ferran Torres finally found a way past Emi Martinez for Spain in the European Champions, and now moments away from being crowned the world champions. They're heading for a 1-0 win to wrestle the trophy from the holders, Argentina, who had Enzo Fernandez sent off. It's a game that will be remembered for the razzmatazz of the halftime show rather than the football, but the Spanish fans around me don't care.
3: Meanwhile, New Zealand's Ryan Fox has won the Open after a dramatic finish at Royal Birkdale. He claimed victory with his final putt. That's the latest. I'm Cam Hall.